Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100. FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। Let's 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy. Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: FM 100's time check. It's 8 a.m.
1: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.

अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आजय समीहा. उम्मीद करती हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और मंडे मॉर्निंग को एंजॉय कर रहे होंगे. और जरूरी है कि आप मंडे मॉर्निंग को अपना मूड अच्छा रखें ताकि पूरे हफ्ते के लिए आप मोटिवेटेड फील करें. और अभी सुबह का आगाज करें अल्लाह ताला के जिक्र से, अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा शुक्र से, और कि उसने आपको एक और दिन दिया है कुछ कमाल करने के लिए. शुक्र अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है. और जब आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नजर आती हैं जिसको हम बहुत नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वाकई में वो अगर ना हो जिंदगी कितनी मुश्किल हो. अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत प्यार करता है, तो हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें. स्पेशली सुबह के वक्त नमाज पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें, और कुरान शरीफ आप हमेशा तर्जुमे के साथ पढ़ें. हम अपने शो का आगाज करते हैं कुरान शरीफ के तर्जुमे के साथ. आइए पढ़ते हैं सूरह मुत्तफिफीन का तर्जुमा, और हम पढ़ रहे हैं अब आयत नंबर 14 से. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ऐसा हरगिज़ नहीं है बल्कि उनके कमाए हुए आमाल ने उनके दिलों पर जंग चढ़ा दिया है. बेशक वो उस दिन अपने रब के दीदार से जरूर महरूम होंगे. फिर बेशक वो जरूर जहन्नुम में दाखिल होने वाले हैं. फिर कहा जाएगा ये वो है जिसे तुम झुटलाते थे. और आप सुन रहे सूरह मुत्तफिफीन का तर्जुमा, इसमें था कि आप उनके अमाल जो है ना वो दिलों में जंग लगा देते हैं. तो इस बारे में सोचना चाहिए कि ऐसे कौन से अमाल हैं जो दिलों पर जंग चढ़ा देते हैं. बहुत ज्यादा झूठ बोलना, धोखा देना, अल्लाह से जब आपकी दूरी हो जाती है तो वाकई में आपके दिलों पर जंग चढ़ना शुरू हो जाता है, और आपको गलत और सही का फर्क जो है वो आपके दिलों में खत्म हो जाता है. इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह के जिक्र हर वक्त करते रहे. और राइट जी, और बच्चों के स्कूल्स खुल गए भाई, कंग्रेचुलेशन. बहुत सारे बच्चे आज स्कूल जा रहे हैं. कुछ स्कूल्स खुल गए हैं, कुछ स्कूल थोड़ा लेट खुलेंगे, लेकिन ये है कि स्कूल्स खुलने का मतलब ये होता है कि पक्के दोस्त इज बैक. वेरी गुड, वेरी गुड. आई वॉज मिसिंग पक्के दोस्त सो मच. लेकिन ये पक्के दोस्त के जो गाने हैं ना, वो सिर्फ मैं अपने स्कूल गोइंग बच्चों के लिए लगा रही होती हूँ, और मैंने नहीं सुने. आपको पता है कि आप लोग जब आप लोग नहीं सुनते हो तो मैं भी नहीं लगाती हूँ पीछे, कि मेरा दिल बहुत चाह रहा था. तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जो स्कूल जा रहे हैं, उनके लिए हम प्ले कर रहे हैं ये गाना जिसका नाम है मेरा फेवरेट पक्के दोस्त. कौन सा, गैस कि कौन सा पक्के दोस्त का मैं गाना लगा रही हूँ. खैर वो मेरा फेवरेट है पीला, बिकॉज पीला इज ऑल्सो माई फेवरेट कलर, एंड आई लव डांसिंग ऑन दिस ट्यून. आइए सुनते हैं.

कैसे हैं आप लोग? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मुर्गी के चूजे, सूरज, मक्खन, लड्डू और मुझ में क्या चीज कॉमन है? बिल्कुल सही, हम सब एक ही रंग के हैं, पीला।

0: जी आप सुन रहे थे पीला सॉन्ग और हम बच्चों के लिए गाने लगाते हैं FM 100 पे सुबह के इस टाइम पे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके बच्चों का नाम अब हमारी बच्चा पार्टी गैंग में शामिल कर लें तो मुझे मैसेज करें आरजे समिया के फेसबुक पेज पे या @RJ Samia इंस्टाग्राम पे भी आप अपने बच्चों के नाम हमें भेज सकते हैं और फिर हम आपके बच्चों का नाम ले लेंगे और उनका नाम लेके फिर पक्के दोस्त के गाने लगाते हैं। दैट्स व्हाट वी डू ऑन गुड मॉर्निंग पाकिस्तान हेयर ऑन FM 100। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे और आपको आज का टॉपिक भी बताएंगे। सुनते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
1: It's 8:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back और नई गाड़ी सिर्फ स्कूल शूज पर। ऐसी ऑफर्स अब कहां?
1: This program is brought to you by
5: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान।
2: And HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL। And

0: Like us on facebook.com/FM247365.
1: Alright, जी आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. और आज का हमारा टॉपिक ये है, बिकॉज फ्रेंडशिप डे अभी गया है तो फ्रेंडशिप डे हम अभी भी बना रहे हैं. और आज अपने अपने दोस्तों के बारे में हमें बताना है कि आपका ऐसा कौन सा दोस्त है जो हमेशा आपके साथ खड़ा होता है. और दोस्त हर तरीके के अलग अलग दोस्त होते हैं. ऑफिस के अलग दोस्त होते हैं, आपके आपके घर आपके बचपन के अलग दोस्त होते हैं, स्कूल कॉलेज के अलग दोस्त होते हैं. खुश नसीब होते हैं वो लोग जो हर जगह आप जिनको हर जगह अच्छे दोस्त मिल जाते हैं. कुछ तो कहते हैं कि जी नहीं, बस हमारे ये मतलब कि चार पांच दोस्त हैं और मतलब इससे ज्यादा ना हमें आगे नहीं बढ़ना, हम बस यही इन्हीं दोस्तों के. बॉसेस जो हैं वो अक्सर अपने कोलीग्स को अपना दोस्त, वो अपने सब ऑर्डिनेट्स को दोस्त नहीं समझते. वो चाहते हैं कि वो उनसे भी ऊंचे वाले लोगों से दोस्ती करें. लेकिन दोस्ती एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आपको ये नहीं देखना होता कि वो अमीर है, गरीब है, सोशल बैकग्राउंड सेम है, नहीं है. दोस्ती इन चीजों से ऊपर होती है. और जो आपके बचपन के दोस्त होते हैं, वो जो अब आपको उस वाली शक्लें देख रहे होते हैं जब आप देखे आए आए मतलब उनको कोई आपसे गर्ज नहीं होती. वैसे उस स्कूल में भी कुछ बड़े होशियार लोग होते हैं, लेकिन खैर ज्यादातर लोग नहीं इतने होशियार होते. वो देखते हैं यार मेरे साथ की दोस्ती मेरे साथ बन रहा है, मेरे साथ चीजें शेयर कर रहा है और बस हो गई दोस्ती. दोस्ती आपकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी कमाई है. अगर आपकी जिंदगी में अच्छे दोस्त हैं, यकीन माने आप बहुत खुशनसीब हैं. और अगर अच्छे दोस्त नहीं हैं, जो मतलब आपकी कामयाबी पे आपके लिए खुश नहीं होते, तो फिर आप बहुत मतलब क्या कहते हैं, ये अफसोसनाक बात है. अच्छा दोस्त कभी भी आपसे जेलस नहीं होता. अच्छा दोस्त आपकी कामयाबी को ऐसे ही समझता है जैसे कि उसकी अपनी कामयाबी है. और ऐसे दोस्त बहुत कम है. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बचपन के दोस्त हैं जो आपके मतलब वो आपसे कंपटीशन नहीं करते, लेकिन जब आप साथ पढ़े होते हैं या स्कूल कॉलेज में होते हैं तो आपकी वो दोस्त हो, लेकिन आपको तो यार मार्क्स तो यार उसके मुझसे ज्यादा आ गए, मतलब ये क्या सीन है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जिंदगी में अच्छे दोस्त हों और ये आपकी अचीवमेंट है. गरीब हो या अमीर हो, दोस्त अच्छे होने चाहिए जो आपके साथ खड़े हो. तो खैर आप हमें बताएं कि ऐसा कौन सा दोस्त है आपका जिसको आप लाइक आज ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, हमें मैसेज करके बताएं. और मैसेज करने का तरीका आप जानते हैं कि अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, टाइप करें KHI स्पेस आपका नाम, आपका मैसेज, उसे भेज देंगे 3636 पर. या आप मुझे फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपका सबसे प्यारा सबसे क्यूट अच्छा दोस्त कौन सा है. राणा इमरान राजपूत के मैसेज आ गए, इनके भी बहुत दोस्त हैं. और अब्दुल रऊफ साहब के भी मैसेज आए कि जब तक खिलाते जाओ तब तक साथ नहीं छोड़ता. तो वह नेगेटिव व्यू है, ऐसी बात नहीं है. कुछ दोस्त आपको भी खिला देते हैं, ऐसी बात नहीं है. और कोई खाने वाला दोस्त नहीं होता. कभी कभी ऐसा भी होता है कि जितने जितने आप अमीर हो जाते हैं, ऊपर जा रहे होते हैं, उतने उतने आपके दोस्त कम हो रहे होते हैं. बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी कामयाबी पे आपके साथ होते हैं. या फिर बहुत जब आप अमीर हो रहे होते हैं तो आप कहते हैं भुला दो उन गरीब दोस्तों को. ये भी होता है, लोगों का अपना एटीट्यूड भी शुरू हो जाता है. एनीवेज तो खैर आप हमें मैसेज करें आचे समीहा के फेसबुक पेज पे, आचे समीहा के इंस्टाग्राम पे. और हम अभी फ्रेंड्स वाले गाने आज हम लगा रहे हैं आपके लिए. आइए सुनते हैं ट्रैक.

ऑनलाइन जी आप सुन रहे थे आई बी देयर फॉर यू और दिस सॉन्ग वॉज फ्रॉम फ्रेंड्स और फ्रेंड्स जो है वो अभी तक का सबसे पॉपुलर जो सिटकॉम है लोग आज भी देखते हैं उस वजह से भी देखते हैं इसमें बड़े खूबसूरत बड़े प्यारे बड़े क्यूट लोग हैं और क्या कहते हैं आई थिंक अभी भी फ्रेंड्स आप देखें तो आपको बहुत मजा आएगा उनमें से एक उनका कास्ट मेंबर जो है ही डाइड तो उसकी वजह से थोड़ा सा सैड हो जाता है देना मगर ऑफकोर्स फ्रेंड्स ने मतलब अमेरिकन टेलीविजन इंडस्ट्री की जिंदगी चेंज की जो लोग उसमें काम कर रहे थे उनकी जिंदगी चेंज की और जाहिर है यू नो एनीबडी कैन रिलेट जब वो उस 20s में होते हैं एंड देन यू नो दे गॉट गुड फ्रेंड्स एंड दैट्स लाइक रियली रियली गुड टाइम जो भी आप कोई भी सैड सिचुएशन भी हो अच्छे दोस्त हो ना आपके साथ में तो वो आपकी सैड सिचुएशन को भी ना हैप्पी कर देते हैं और अगर आप अकेले हो और भला अच्छा माहौल हो फिर भी आपको अपने दोस्त बहुत याद आते हैं तो खैर आपके अंदर अगर दोस्त बनाने की क्वालिटी है तो सीन है आपका एनजी

0: वेलकम बैक जी, आप हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, और आज हम बना रहे हैं आप लोगों के साथ वर्ल्ड फ्रेंडशिप्स डे, कि आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है जिसे आप ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, कि पता चले कि जी कौन है आपका ये इतना प्यारा खूबसूरत दोस्त जो आपके साथ हर अच्छे बुरे वक्त में खड़ा रहा है। ओके जी, और रहीम बलोच, कैसे आप रहीम बलोच, और बच्चे कैसे आपके, ठीक ठाक हैं, और मतलब कि वो जा रहे हैं ऑफिस कह रही हूँ, स्कूल तो चले गए होंगे। ओके, और अब्दुल हसीब शरीफ ने अपने दोस्तों के नाम लिखे हैं, और यही मैं चाहती थी कि अपने दोस्तों को आप हाईलाइट करें। अब्दुल हसीब शरीफ कह रहे हैं कि वकास अहमद, उजमा हसन खान और सुनैया फैसल एंड एक्सेट्रा एंड फ्यू अदर्स ब्लेस्ड टू हैव बंच ऑफ सच फ्रेंड्स, वेरी गुड एंड इट्स रियली स्वीट ऑफ यू कि आप अपने दोस्तों का नाम ले रहे हैं। तो प्लीज अपने दोस्तों के नाम हमें बताएं, और हो सकता है उन्होंने सुन के खुश होंगे कि सुबह सुबह कौन उनको याद कर रहा है। ऑलराइट, और अच्छे दोस्त आपका सबसे बड़ा सरमाया होते हैं। अदनान अहमद का मैसेज आया कि मेरे लिए वो दोस्त मेरी माँ है, यानी दुनिया छोड़ भी दे तो रात 2 बजे भी जाकर पूछती है बेटा खाना खाया, वही असल दोस्त है जो बगैर शर्त के साथ देती है। मेरा सबसे वफादार दोस्त मेरा अल्लाह है, जब सब मसरूफ होते हैं, जब कोई समझ नहीं पाता तब वो सजदे में मेरी बात सुनते हैं, इससे बड़ा दोस्त कोई नहीं। मेरी किताबें जब तन्हाई होती है, जब दिल भर जाता है, वही बगैर जज के साथ देती है और हर बार कुछ नया सिखा देती है। बाकी मेरे ख्याल में इंसान का सबसे अच्छा सच्चा दोस्त वक्त है, अच्छे में भी साथ, बुरे में भी साथ, और जो वक्त में साथ निभाए वही असल अपना होता है। बहुत अच्छा मैसेज किया आपने अदनान अहमद, और माँ बाप आपके जो है वो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, अल्लाह तो है ही आपका अच्छा दोस्त, लेकिन ये भी जरूरी है कि असली लाइफ में भी आपके दोस्त हों और जिनके साथ आप ये सब बातें शेयर कर सके। आपने हमारा नाम नहीं लिया, हम भी तो आपके दोस्त हैं, मतलब कौन है हम, मैं कौन हूँ। ओके जी, और अगर चाहें तो मेरी भी तारीफ कर सकते हैं एज अ फ्रेंड, मुझे कोई मसला नहीं है। हमें आप मैसेज करें आजय समिया के फेसबुक पेज पे या ताजे समिया इंस्टाग्राम पे, और ये बताएं कि आपका पक्का दोस्त कौन है सबसे अच्छा जो आपके साथ हर टाइम पे क्या कहते हैं खड़ा होता है। और आज हम जो है ना वो दोस्ती वाले गाने ही लगा रहे हैं, तो आइए सुनते हैं अभी जुनून बैंड का ये गाना, यारो यही दोस्ती है।
1: Friendship for the people of Pakistan to the people of Denmark. All to you. Dostey!

0: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: PDCL Flash Fiber आजादी ऑफर लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPDCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शर्त जवाबित लागू है।
2: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में ₹15,000 या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या ₹50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
4: This program is brought to you by
5: Is Jashn-e-Azadi Fatma Fertilizer ke saath milkar buland kare apne shehar ki shaan
0: and HBL Freedom Account jahan khwab wahan HBL and
6: Candyland Non-stop fun karte jao
0: and
7: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
8: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
9: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफादे आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
10: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा। तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अज़्मे इस्तेहकाम मुस्तहकम पाकिस्तान।
9: मुफादे आमा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
11: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
12: हमने अपने आप को से 3 बार मौत देखी।
13: टाइम से मनु ऐसे के मैं हूँ, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
14: फिर उन्होंने साड़ियाँ वीडियो बनाया, सब रूम मारिया, सब छुटिया।
11: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
15: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
11: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम, मुल्कगीर क्रैकडाउन जारी।
16: ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج، گرفتاریاں، جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں۔ اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں۔ مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں، انسانی سمگلروں کے چنگل سے بچے، خواب ضرور دیکھیں، بہتر راستہ چنیں۔ حکومت پاکستان۔
17: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
18: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک FM 24/7/365 FM 24/7/365
19: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت۔
20: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں۔
19: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا۔
21: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں۔
22: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں۔ سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا۔
19: میں اوبیسیٹی کا شکار ہوں، صرف واک سے یہ کم نہیں۔
21: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی۔
22: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
21: ابھی اسی وقت اپنا بی ایم آئی چیک کروائیں،
19: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
22: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں۔
19: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں۔
17: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔

जी आप हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में और मैं हूं आपकी दोस्त आजय समीहा और आज हम बात कर रहे हैं दोस्ती की ही कि आप का सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट कि जिंदगी के अंदर अच्छे दोस्तों के अच्छे दोस्त जो है ना वो हर चीज को अच्छा बना देते हैं और राइट और आपकी कामयाबी आपके अच्छे दोस्तों में क्योंकि फैमिली तो आपको चलो अल्लाह की तरफ से मिलती है, दोस्त वो चीज है जो आप खुद बनाते हैं अपने लिए और उसमें आप ही का कमाल होता है ज्यादातर और सामने वाले का। इकबाल हुसैन साहब का मैसेज आ गया, अस्सलाम वालेकुम समीरा जी, कहते हैं कि दोस्त कभी बूढ़ा नहीं होने देते, जब भी मिलते हैं पुरानी बातें याद दिला देते हैं। मैं दोस्त बहुत कम बनाता हूं, बेस्ट फ्रेंड्स की लिस्ट में तारिक मुगल जो आजकल इस्लामाबाद में है, कॉलेज के दोस्त आरिफ आसिफ मेमन अकरम अयाज इस्लाम तारिक से कल बात हुई, आपसे भी दोस्ती को बहुत टाइम हो गया है, अल्लाह से दुआ है कि ताहयात हमारी दोस्ती कायम रहे, आमीन जजाकल्ला जी। बिल्कुल अल्लाह करे हम लोगों की दोस्ती ऐसी ही रहे और थैंक यू, आपने मुझे बहुत अच्छा सा तोहफा कर दिया और मुझे अच्छा लगा। खैर और आप लोग मुझे मैसेज करें आजय समीहा के फेसबुक पेज पे या एट आजय समीहा इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, कौन वो दोस्त है आपका जो आपके साथ खड़ा रहता है और जब आपको कोई परेशानी होती है आप उसी को याद करते हैं। अच्छा पक्का दोस्त वो होता है जिसको आप दुख में याद करते हैं, परेशानी में याद करते हैं, जो आपको पता होता है आपको जज नहीं करेगा, बल्कि कुछ दोस्त होते हैं जो आपसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं आपकी परेशानी में। तो अच्छा दोस्त पाने के लिए पहले अच्छा दोस्त बनना भी पड़ता है। ऑलराइट, खैर मैं अपना फेवरेट गाना आज प्ले करने वाली हूँ, ज्यादातर मैं अपने फेवरेट ही गाने प्ले कर रही होती हूँ, कभी कभी लोगों की फरमाइश ही प्ले कर लेती हूँ, लेकिन ये गाना मेरा बहुत फेवरेट है क्योंकि दिस यू नो दिस वॉज वन सॉन्ग जब मैं अपने बचपन में सुन रही थी कि रिमाइंडेड मी ऑफ फ्रेंडशिप, के दोस्त होते हैं तो आपकी जिंदगी में कितने रंग होते हैं और एक ऐसा टाइम होता है जब दोस्त ही सब कुछ होते हैं, दोस्त आपकी फैमिली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप उनके साथ ज्यादा टाइम गुजारते हैं, तो ऐसे उस टाइम को याद करते हैं। समर ऑफ 69 आई एम गोइंग टू डांस एंड यू गाइस एंजॉय।

0: Alright, जी आप सुन रहे थे ब्रायन एडम्स की आवाज में ये ट्रैक समर ऑफ 69 और बहुत सारी जो हमारी अच्छी यादें हैं जब आप उनके बारे में सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपके बेस्ट फ्रेंड से भी जुड़ी जुड़ी होंगी. Alright, जी तो आप लोग मुझे मैसेज करें और बताएं कि आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है जो आपका हमेशा साथ देता है भले आप कितनी भी स्टूपिड बातें करते हो. हमें मैसेज करने का तरीका ये है कि अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, टाइप करें कि HI स्पेस आपका नाम आपका मैसेज उसे भेज देंगे 3636 पर. यहाँ मुझे मेरे फेसबुक पेज पे इंस्टाग्राम पे आज समिया के भी पैगाम अपना भेज सकते हैं दोस्तों. इंतजार रहेगा आप लोगों के मैसेजेस का. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद.
1: FM 100 टाइम चेक. इट्स 9 AM.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा.
4: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू.
5: बंद करो ना ढक्कन.
6: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
7: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस. 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.

0: जैज कैश के साथ पाओ फिर से एक करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
1: PDCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagai sirf ₹4,999 mein. Aur paaye free Shock Android TV Box worth ₹15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagayein. Call 1218 ya UPDCL app download karke subscribe karein. Terms and conditions apply. Sharaat aur zawabit lagu hain.
2: Step School से foundation हो strong. Step Schools दे रहा है modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. We make learning fun from primary years education through STEAM approach, ताकि आपका बच्चा develop कर सके strong science, technology, engineering, art and mathematics skills. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
3: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
4: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan? Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
6: This program is brought to you by
7: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान
6: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खाब वहां HBL

गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान विद आरजे समीहा, और हम लोग आज बात कर रहे हैं दोस्ती की कि आपका सबसे प्यारा जिगरी दोस्त कौन सा है। आली अंसारी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप आली अंसारी, और आप क्या कहेंगे आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है। और दोस्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदगी के अंदर, दोस्ती ना हो तो फिर आप कहते हैं कि यार क्या है। और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि वो आपके साथ भले सालों बात ना करें, लेकिन जब भी वो आपको मिलते हैं, आपकी उनसे बात होती है, आप खुश होते हैं। और मैं आपको बात बताऊं कि बचपन के दोस्त, यानी कि जिससे आपकी बहुत सालों पहले की दोस्ती है, उन्हें नहीं खोना चाहिए किसी छोटी सी बात पे। बहुत सारी बात उनकी इग्नोर करनी चाहिए, क्योंकि इतनी पुरानी दोस्ती और इतने अरसे से वो बंदा आपको बर्दाश्त कर रहा था, ये भी एक बड़ी बात है। खैर, मंडे मॉर्निंग है, आप बताएं क्या क्या आपके प्लान्स हैं। प्लान्स तो खैर मुझे किसी ने क्या बताना है, बारिश का खैर बड़ा इंतजार है। अदनान अहमद, आप कह रहे थे कि बारिश जो होगी वीकेंड पे, कोई इतनी खास बारिश नहीं हुई, ड्रिजनिंग हुई। अच्छा, जब हल्की हल्की बारिश होती है दिल को तरसाती है वो, कि यार जरा खुलके हो जाओ, जरा खुलके बारिश हो, तरसी तरसी तरसी बारिश है। हर कराची में ना हर चीज के लिए डर ही लगता है कि यार अगर हमने दुआ ये मांग ली कि बस गरज बरस सावन घिरे आयो, वो तो आ जाएगा, लेकिन फिर जो सड़कों का हाल जो है हमारी, उनका क्या हाल होने वाला है। तो ये बस समय, ये इस बात की भी बड़ी टेंशन नहीं रहती है, ऐसे खुल के हम दुआ भी नहीं मांगते बारिश के कराची के अंदर। और अभी जहां जहां बारिशें हुई हैं वहां वैसे ही बुरा हाल होना शुरू हो गया है, बारिश हुई नहीं तो हाल बुरे हो गए। और मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे ही आपको लगे कि बारिश के आसार हैं, और आप सीधा घर पहुंच जाएं, क्योंकि सबसे बड़ा मसला कराची के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाना है बारिश के अंदर, और कोई फन नहीं है। पहले होता था कि जी बारिश में घूम रहे हैं बाहर, ऐसा कोई चीज नहीं है। हाँ, अगर आप डिफेंस क्लिफ्टन में हैं और फेज 8 के रस्तों को आप इंजॉय कर सकते हैं, वो भी अगर आपके पास मेरी सबसे लीस्ट फेवरेट गाड़ी डाला है तो वो आप उसमें घूमें तो सही है। लेकिन बाकी लोग, खास तौर पर मोटरसाइकिल चलाने वाले लोगों, तो उनके क्या, उनके लिए बारिश भाई, वो तो बोले खुदा के लिए घर ही पहुंच जाओ। और शारा फैसल को हत्तुल इम्कान अवॉइड करें, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट ईयर क्या हुआ था। और मुझे नहीं लगता कि लास्ट ईयर जब इतना बड़ा वाकया हुआ और जब इतनी गाड़ियां खराब हो गई वहां पे, तो उसके बाद कोई खातिर ख्वाह लोगों ने कोई एक्शन लिए। बड़ी बड़ी बातें हुई थी कि अब तुषार फैसल बदल जाएगा, बारिश का एक खतरा भी नहीं रुकेगा। अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसी उन्होंने कोई खास ऐसे काम किए हैं कि वो कुछ अलग मंजर पेश करेगी अगर बारिश हो गई, खुलके वाली बारिश हो गई कराची के अंदर। खैर, हमारा आज का मौजू है आपका दोस्त, क्या आपका दोस्त, तो मेरी दोस्त तो बिल्ली की गोश्त, ऐसी बातें हम लोग करते थे स्कूल में। खैर, और दोस्त का वक्त के साथ पता चलता है, हर दोस्त होता नहीं हाथ मिलाने वाला, लेकिन दोस्त फिर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक आपका कंजूस दोस्त होता है जिसको अपने ग्रुप से नहीं निकाल सकते, जो कभी जिंदगी में पैसे खर्च नहीं करता, लेकिन वो फिर भी आपको दोस्त, वो आपको चाहिए होता है कि चलो कोई तो जिसका मजाक उड़ा सके। तो हर तरह के दोस्त होते हैं। एक होता है जो बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है अपनी, अगर उसकी किसी फेवरेट चीज को या फेवरेट क्रिकेटर को बुरा बोल दो तो वो बहुत ऐसे हाइपर हो जाते हैं। हर दोस्त की एक अलग किस्म है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी दोस्ती के बड़े दावे तो नहीं करते, लेकिन आपको पता होता है कि कभी भी मुझे जरूरत हुई तो वो इंसान मेरे साथ हमेशा हमेशा खड़ा होगा। और कुछ वाकई में बहुत ही प्यारे दोस्त होते हैं जो आपकी फैमिली के बारे में कंसर्न होते हैं। आपकी अम्मी से मेरी फ्रेंड्स आए तो मेरी अम्मी से भी, अब्बू से भी, सबसे उनकी दोस्ती है। और ऐसे भी लोग होते हैं, कभी किसी दोस्त से लड़ाई चल रही है लेकिन अम्मी से दोस्ती है, तो बस फिर भी मिलना जुलना होता है फैमिली का। तो ये और जो आपकी फैमिलीज हैं वो भी बड़ा प्यार करती हैं दोस्तों से, कि यार ये मेरे बेटे का पहला दोस्त है, बचपन का दोस्त है, तो वो आपको डबल डबल प्यार मिलता है। तो ये पूरी फैमिली से जो बचपन के दोस्तों की है ना, वो दोस्ती होती है, क्योंकि आना जाना होता है और वो उसी तरीके से आपको ट्रीट करते हैं जैसे कि वो अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं। ऑलराइट, तो ऐसी प्यारी प्यारी दोस्तियों की हम बातें कर रहे हैं जो हमारा सरमाया है आज कल के दौर में। वाकई में अब दोस्तों के लिए भी लोगों के पास टाइम नहीं है। खैर, और राना इमरान राजपूत कह रहे हैं कि जी आज मेरे लाला आबिद अमीर गायब है ना। आबिद अमीर किधर चले गए? आबिद अमीर आप कहाँ है, आवाज दे। और आ रहे होंगे भी दूसरे आरजेएस का शो सुन के, हर जगह इन हाजिरी लगा रहे होते हैं, आप टेंशन नहीं लें, आ जाएंगे। और नवीद अहमद कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, 79 इंडिपेंडेंस डे कमिंग। क्या बात कर रहे हैं आप, है कसम खाए, वाकई में 14 अगस्त आ रही है, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा, आपने बता दिया। और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम,
صبح بخیر، خوش آب رہے سمیحہ اور تمام لسنرز کو میرا پیار بھرا سلام. سب سے پہلے دوست جو ساتھ دیتا ہے سمیحہ، تمام لسنر، ایک ایسا دوستی کا رشتہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. نوید احمد، مجھے آپ سے بڑی شکایت ہے، آپ ایک دفعہ آئے، آپ نے اتنے اچھے کھانے بنا کے ہمیں دیے، اس کے بعد آپ کہاں غائب ہیں. مطلب یہ تو کوئی دوستی نہ ہوگی نا کہ بندہ صرف ایک دفعہ بنا کے دے، یہ تو کوئی دوستی نہیں ہوئی. کہاں ہے میری دوست یار، آج کل کچھ کھانا پینا نہیں آ رہا. اور رائٹ، اور دوست سب سے اچھا وہی لگتا ہے جو آپ کو کھلائے، کھلانے والے دوست سب کو پسند آتے ہیں. اور میں ہوں جو بڑی کھلے دل سے تعریف کرنے والی دوست ہوں. میں ہوں جو کھاتی ہے مگر تعریف کرنے میں کوئی کنجوسی نہیں کرتی. کبھی کبھی میں بھی کھلا دیتی ہوں، ایسی کیا بات ہے. اور آپ لوگوں کے پیغامات کا ہمیں انتظار رہے گا. ہمیں میسج کریں، اپنے میسج باکس میں جائیں، ٹائپ کریں کہ ایچ آئی اسپیس آپ کا نام، آپ کا میسج، اسے بھیج دیں 3636 پر. یا میرا پیج ہے فیس بک کا، انسٹاگرام پیج بھی ہے، آر جے سمیحہ نام ہے میرا. آپ وہاں پہ بھی مجھے اپنا دوست سمجھ کے میسج کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ ساتھ آپ کے کس دوست نے دیا، ہو از یور بیسٹ فرینڈ. اور ابھی ہم کلاسک ٹائم میں گانا لگا رہے ہیں دوستی کا ایک سمندر، اور جسے تحریر کیا زہرا نگاہ نے، اسے پرفارم کیا نیرہ نور نے، اور یہ بہت ہی فیمس پاکستان کا ڈرامہ ستارہ اور مہرالنساء کا ساؤنڈ ٹریک تھا. آئیے سنتے ہیں.

0: आप सुन रहे थे गाना सितारा, और जी आप सुन रहे थे सितारा और मेहरुनिसा का ये ट्रैक, और बड़ा ही खूबसूरत होता है. और कोई भी रिश्ता जो होता है, सिर्फ ये नहीं कि आपके दोस्त हों, उसमें दोस्ती होनी चाहिए. जैसे कि मियां बीवी का रिश्ता है, इसमें अगर पहली चीज दोस्ती है, अगर मियां बीवी पहले दोस्त हैं तो वो एक बहुत अच्छी जिंदगी, अंडरस्टैंडिंग वाली जिंदगी गुजरती है. इसी तरह अगर आपके पास ऑफिस के अंदर ऐसे लोग हैं आपके साथ जो आप दोस्ती में आपका काम कर देते हैं, तो दोस्ती बहुत जरूरी है. और कुछ लोग कहते हैं जी हम तो बड़े हैं और हम बड़ा ही रहेंगे हमेशा, तो फिर वो फिर दोस्ती कभी हो नहीं पाती. आजकल का दौर तो ये है कि आपको अपने बच्चों से भी एक दोस्ताना माहौल में बात करनी चाहिए. बच्चों के आप सबसे अच्छे दोस्त बने, उनको समझें, उनको अंडरस्टैंड करें, तभी वो रिश्ते चलते हैं. जब आप माँ बाप बनना शुरू हो जाते हैं तो कहते हैं ना मेरे बाप मत बना करो, तो जब बाप बाप भी बन रहा होता है तो फिर ये होता है कि बच्चे दूर हो जाते हैं. वो कहते हैं यार हम तो इनके एक्सपेक्टेशंस पे कभी पूरे उतर ही नहीं सकते. जो दोस्त होता है उसको एक्सपेक्टेशंस ही नहीं होती. दोस्त आप जैसे हैं, भले आप कितने पागल हैं, टेढ़ा है पर मेरा है वाली फील होती है, दोस्त आपको जज नहीं करता. खैर आपके मैसेजेस का इंतजार है, हमें मैसेज करें आजय समिया के फेसबुक पेज पे या आजय समिया इंस्टाग्राम पे, और हम मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद.
1: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab वहाँ HBL.
3: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
4: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
1: This program is brought to you by
5: Is Jashn-e-Azadi Fatma Fertilizer ke saath milkar buland kare apne shehar ki shaan.
2: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.

वेलकम बैक. आप भी आप सुन रहे थे कि ड्रग्स के बारे में ये कैंपेन. और जो अच्छा दोस्त होता है आपका, वो ये नहीं होता कि जी तुम तो ड्रग्स लेना शुरू हो गए हो और मतलब अब तुम्हें मैं छोड़, कुछ लोग होते हैं कि तुमने ड्रग्स लेना शुरू कर दी मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ. कुछ लोग होते हैं यार तू ड्रग्स ले रहा है लेकिन तुझे छोड़नी पड़ेगी चीज क्योंकि ये खराब है. फिर उसको रिहैब में लेकर जाते हैं, उसका साथ नहीं छोड़े क्योंकि आपके साथ छोड़ने से वो ड्रग्स नहीं छोड़ देगा. या कोई भी गलत आदत या कोई बुराई उसके अंदर है तो दोस्त के अंदर बड़ी पावर होती है. अक्सर पेरेंट्स भी दोस्त से कहते हैं यार तुम समझा दो, इसको समझ नहीं आ रहा. तो कुछ बुरी आदतें छुड़वाने में दोस्तों को अपना किरदार अदा करना चाहिए. यही नहीं कि जी आप बस छोड़ दें कि यार तुम तो बस तुम तो किसी की बात नहीं सुन रहे. उसकी आदतें सही करवाएं. और वक्त लगता है चीजें छोड़ने में, वो एक आपके कहने से नहीं छोड़ेगा क्योंकि ये एक बीमारी की तरह होती है. आपके अंदर अगर नशा चला गया आसानी से नहीं जाता. और मसला ये भी है पाकिस्तान के अंदर कि बहुत अच्छे रिहैब सेंटर्स यहाँ पे हैं ही नहीं. कुछ हैं तो वो बहुत ज्यादा वो अमीरों के शौक हैं, वो मतलब इट्स टू एक्सपेंसिव वो, और वो होटल की तरह उनके पर डे के चार्जेस रखे हुए हैं. गवर्नमेंट अस्पताल में जाएं तो बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है लेकिन वहां पर आपको बहुत ही कम ढंग के लोग मिलेंगे जो एडमिन स्टाफ में होंगे और कि वो आपको सही जवाब दे सकें या गाइड कर सकें कि इसका इलाज कैसे हो रहा है. और तो ये बड़ा मुश्किल मामला है लेकिन ये बहुत कॉमन है. सो वी हैव टू एक्सेप्ट कि ड्रग्स बहुत ज्यादा कॉमन है. लोग एडिक्टेड हो रहे हैं, लोग हाई डोजेस से उनकी जाने भी जा रही हैं. बहुत ज्यादा यंग एज के बच्चे आप इसके अंदर इन्वॉल्व हैं. एक तो अपने बच्चों पे जरूर नजर रखें कि उनके दोस्त कैसे हैं. अगर दोस्त उनके पढ़ाई से करीब हैं या उनकी अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज हैं उन्हीं से दोस्ती करने दें क्योंकि दोस्त से इंसान, कुछ लोग होते हैं जो छोड़वा देते हैं बुरी आदतें, कुछ लोग होते हैं जो अपने दोस्तों की बुरी आदतें अपना लेते हैं. तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके, अगर आप बड़े हो गए तो आपके अपने दोस्त अच्छे हो लेकिन आप बच्चों के दोस्तों पर जरूर जरूर नजर रखें. अक्सर पेरेंट्स छोड़ देते हैं, हाँ यार उसके अपने दोस्त हैं एंजॉय करने तो कोई बात नहीं, ये इसकी अपनी चीज है. जी नहीं, दोस्तों का आपकी शख्सियत पे, स्पेशली जब आप स्कूल कॉलेज में होते हैं तो बहुत ज्यादा असर पड़ता है. आपके फ्रेंड्स के ओपिनियन बड़े मैटर करते हैं और तो इससे जरूरी है कि आपके बच्चों के दोस्त बड़े अच्छे हों, काबिल हों, अच्छी फैमिली से उनका ताल्लुक हो. बल्कि अब तो फैमिलीज का भी नहीं है, कोई फैमिली बुरी नहीं होती, कोई फैमिली नहीं चाहती उनके बच्चे ड्रग्स करें, लेकिन जो है वो इसमें बहुत नजर रखनी चाहिए. खुदा ना खासा अगर आपके दोस्त के अंदर कोई बुरी एडिक्शन है तो उसको आपने कोशिश करनी चाहिए कि आप उसका साथ दें कि वो उस बुरी एडिक्शन को छोड़ दें. और वैसे क्या क्या और भी चीजें, बीमारियां हैं, कंजूसी भी एक बीमारी है और कंजूसी एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपके दोस्त आपसे दूर ही हो जाएंगे. और जो खिलाने वाले लोग होते हैं उनके तो गैर लोग भी दोस्त बन जाते हैं. खैर, आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास और मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों के मैसेजेस का और ये जानने का कि जो है ना वो क्या कहते हैं आपके दोस्त कौन से हैं. तो आप हमें इंतजार रहेगा. अच्छा जी, और लोग अपने दोस्तों को याद करें, मेरे शो में भी याद करें. आबिद अमीर आ गए हैं, मुबारक हो, मुबारक जी. कहे हैं कुछ लोग जिंदगी में, बल्कि मैं लोगों को जिंदगी भर का कमाई कहता हूँ. इरफान खान, यासिन खान नियाजी, फयाज, अब्दुल लतीफ. आबिद अमीर साहब आपको बड़ी याद कर रहे थे तो आगे सुन के, दूसरे लोगों का शो है ना, हर जगह हाजिर लगानी होती. खैर, ये आबिद अमीर की अच्छी बात है कि हर एक को उन्होंने अपना दोस्त बनाया हुआ है और ये कहने की बात है लेकिन बहुत सारे लोगों से दोस्ती करना, निभाना मुश्किल काम है. और राय जी, बातें हमारी जा रही हो सारी हैं. अभी हम सुन रहे हैं दोस्ती वाला गाना और सच में इस गाने का नाम ही दोस्ती वाला सॉन्ग है. आइए सुनते हैं.

वेट कर रहे हैं आज, और आप लोगों के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। आबिद अमीर, राना इमरान राजपूत और वसीम अहमद सिद्दीकी का भी मैसेज आ गया हमारे पास, और इकबाल हुसैन साहब का भी आ गया। राना इमरान राजपूत कह रहे हैं, मैं अव्वल तो दोस्ती नहीं करता सिस्टर किसी और से, जो दोस्त एफएम से मिले हैं वो लाजवाब हैं। आबिद अमीर, मनाजिर महमूद मनाजिर, इरफान खान, नाजिम दरवेश, आजी आमिर शाह, रहीम बलोच और आबिद अमीर, इरफान खान है मेरी जान। बिल्कुल सही, आबिद अमीर के दो दो दफा नाम लिए जा रहे हैं, क्या बात है भाई, क्या बात है। और उसके साथ साथ वसीम अहमद सिद्दीकी का मैसेज आया। वसीम अहमद सिद्दीकी कह रहे हैं, सिंसियर फ्रेंड इज अ ट्रेजर इन लाइफ, ही इज अ ट्रस्ट वर्दी एंड अ ट्रू कंपेनियन इन बोथ गुड एंड बैड टाइम्स। वसीम अहमद सिद्दीकी, थैंक यू सो मच। और वाकई में एक अच्छा दोस्त एक खजाना होता है, और सेकंड ये कि आपकी आपकी भी दोस्ती जो है ना, वो अदनान अहमद की तरह किताबें होंगी, किताबें आपकी बेहतरीन दोस्त होंगी, है ना। मेरे अब ये कहते थे, कहते किताबें ना आपको धोखा नहीं देती, आप शायद उम्मीद भी नहीं रखती, वो सिर्फ आपको देती हैं किताबें। और तो ये वाकई में सही बात है। और नवीद अहमद कभी आया हुआ है, और उसके साथ साथ नसीम पटेल जी, कैसी हैं नसीम पटेल जी, आप कहाँ थी इतने दिनों से, आपको मिस करी थी, पिछले शोज में आपका नाम नजर नहीं आया मुझे। और राइट, हमारा अभी वक्त हुआ है क्या कहते हैं, वाटर साइंस के ट्रैक का, आइए सुनते हैं। ये उन्होंने उन दोस्तों के लिए परफॉर्म किया है, गाना गाया है, जो दोस्ती छोड़ के तोड़ के चले जाते हैं लेकिन फिर भी हमारे दिल में हमेशा उनकी याद रहती है। आइए सुनते हैं।

0: डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।

0: 6:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally. Ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके।

0: जैज कैश के साथ पाओ फिर से एक करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
1: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
2: बंद करो ना ढक्कन।
3: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।
5: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
0: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
6: हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान। इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान। कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैशटैग दिल से सरसब्ज के साथ सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका iPhone 17 Pro Max, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात। तो आओ दिल से देखें सरसब्ज पाकिस्तान।
7: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। वी मेक लर्निंग फन फ्रॉम प्राइमरी इयर्स एजुकेशन थ्रू स्टीम अप्रोच, ताकि आपका बच्चा डेवलप कर सके स्ट्रॉन्ग साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड मैथमेटिक्स स्किल्स। Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
8: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein aur paaye free Shock Android TV Box worth ₹15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe kare. Terms and conditions apply. Sharaat to sawabit lagu hain.
9: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
10: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback और नई गाड़ी सिर्फ स्कूल शूज पर। ऐसी ऑफर्स अब कहाँ?
11: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
10: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback और नई गाड़ी सिर्फ स्कूल शूज पर। ऐसी ऑफर्स अब कहाँ?
12: This program is brought to you by
6: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान।
4: And HBL Freedom Account, जहाँ खाब वहाँ HBL।

0: Like us on facebook.com/FM247365.
1: FM247365.
2: जी आप हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में और मैं हूं आपकी दोस्त आज समी। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों की कि कौन आपके प्यारे खूबसूरत दोस्त हैं, क्योंकि आज हम मना रहे हैं हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हर चीज का के हैप्पी लगना जरूरी है, बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी फ्रेंडशिप डे। खैर और हम बना रहे होते हैं, बस हमें हर दिन मनाना होता है। और आबिद अमीर के मैसेजेस आ रहे हैं। आबिद अमीर कह रहे हैं कि जी कि अरे नहीं, किसी के शो में भी नहीं गए, वो रात को इमरजेंसी पिकनिक प्लान बना लिया था ससुराल वालों ने, रात बहुत देर हो गई, बच्चों की स्कूल की भी छुट्टी हो गई, कॉलेज की भी, और हम अभी तक काम पर नहीं पहुंचे। फुल पार्टी सीन चल रहा है, और भाई संडे नाइट की पार्टी अभी तक सुबह तक चल रही है। उसे पिकनिक पे जाना मुझे तो खैर बहुत ही, कराची के अंदर मुझे कहीं भी जाना, खास सुबह समंदर की पिकनिक पे जाना तो बहुत ही अजीब लगता है। वो जो ड्रामों में पिकनिक सिखाते हैं ना किसी बड़ा ही कोई अच्छा सा हट, वैसे आजकल बीच पे कितने खूबसूरत हट्स बन रहे हैं, वो खूबसूरत सा हट हो कि वो हट के अंदर स्विमिंग पूल है। भाई जब आप बीच पे जा रहे थे तो स्विमिंग पूल की क्या जरूरत है, लेकिन नहीं जी, हट के अंदर स्विमिंग पूल बनाया हुआ है कि अगर समंदर का पानी अच्छा नहीं लगे तो स्विमिंग पूल में नहा लो। खैर वो बड़े खूबसूरत बनाते हैं, ऐसा हट हो तो बंदा जाए भी कि चलो ठीक है, वरना अक्सर जब बिरयानी की देख लेके लोग जा रहे होते हैं तो फिर काम ही काम होता है। खैर हम बात कर रहे हैं दोस्ती की। हाँ लेकिन दोस्तों के साथ पिकनिक मुझे अच्छी लगती है, हर चीज अपने फ्रेंड्स के साथ, उनके फैमिली के साथ बड़े काम होते हैं, डांटे भी पड़ी होती हैं, तुम यहाँ बैठी हो, यूं ये क्यों नहीं करी, ये काम क्यों नहीं करी। खैर और अब फ्रेंड्स के साथ तो फुल पार्टी, आप बस इंजॉय करें, हर जग चीज इंजॉय कर रहे होते हैं। यहां तक कि मुझे याद एक दफा हम लोग रात को वापस आ रहे थे टर्टल बीच से और गाड़ी खराब हो गई थी, और उसको भी मेरे दोस्त इंजॉय कर रहे थे, और हमारी हालत वो टेंशन हो रही थी कि यार अब घर कैसे पहुंचेंगे, लेकिन क्योंकि वो दोस्त थे हमारे साथ अब तो वो बहुत ऊंची हाई पोजीशन पे पहुंच गए। लेकिन मैं उनको याद दिलाती हूँ, बेटा मुझे तुम्हारा बताना, मुझे बड़े तुम्हारे सीक्रेट पता है, तो मेरे सामने तो जरा शो तो तुम मारो नहीं अपनी बैंक की नौकरी की। बैंक के अलावा भी बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पर माशाल्लाह सब पहुंच गए, जिनसे जीरो उम्मीद थी वो पहुंच गए। तो खैर हमारी बातें चल रही हैं, और नवीद अहमद कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि आप इकबाल हुसैन को मेरी तरफ से गाना डेडिकेट करें, नगमी कौमी नगमा। अच्छा इकबाल हुसैन कह रहे हैं कि बचपन की एक बात याद आ गई, किसी से खफा होते थे तो हाथ की सबसे छोटी उंगली, कुट्टी दोस्ती कह रहे हैं ना आप, तो वो होती थी, अब नहीं होती कुट्टी दोस्ती, अब तो ब्रो ब्रो वाली दोस्ती है, ब्रो व्हाट्सअप मैन व्हाट्सअप डूड, और जी जेन जी की और जेन अल्फा की लैंग्वेज ही अलग है, और लेकिन आनी चाहिए। आई थिंक पेरेंट्स को भी ये जेन जी जेन अल्फा की लैंग्वेज सीखनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चों के दोस्त बन के रहें और डिफरेंस ना हो, क्योंकि आज का दौर अगर अब तो बच्चों के भी दोस्त नहीं है। मैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है ना जो फिजिकली बात करते हैं लोग, फोन पे पता नहीं रैंडम स्ट्रेंजर्स से बातें कर रहे होते हैं, कमेंट्स के ऊपर लोगों की दोस्ती हो गई कि जी उस मैंने कमेंट किया तो जी फलां मुल्क से उसने कमेंट कर दिया, वो लोग आपस में कमेंट के थ्रू दोस्ती हो गई। तो ये बच्चों पर नजर रखनी पड़ती है कि बेटा रियल फ्रेंड्स बना लो, डिजिटल फ्रेंड्स पे ही चले गए। तो खैर आजकल या हर दौर में दोस्तियां बड़ी खास होती हैं, दोस्तियां बड़ी रेयर होती हैं, ऐसे लोग जो आपको कबूल कर लें, एक्सेप्ट कर लें आपके साथ तमाम पागलपन के साथ, ये बहुत कम है। और बात हो रही है गानों की, तो हम जो है कौमी नगमा, नवी साहब ने कहा तो अली हैदर का ये जो गाना है पुरानी जीन्स, ये हमारा कौमी नगमा ही है, और ये इतना मशहूर हुआ कि इंडिया के अंदर भी इस गाने का वर्जन बना। और लेकिन अच्छी बात 90s के स्टार्स की ये थी कि ना सिर्फ वो गाते अच्छा थे, उनकी शक्लें भी अच्छी होती थी, वो अपने गानों में खुद ही एक्ट कर रहे होते थे, भले वो वाइटल साइंस हो, जुनून हो, स्ट्रिंग्स हो, इवन अली हैदर, सजाद अली, दे वुड फाखिर अली जफर, वो लोग अपने वीडियोज में खुद ही आ रहे होते थे, किसी को लेने की जरूरत नहीं होती थी। ऐसा बहुत कम होता है, बंदा देखने में भी अच्छा हो और गाता भी अच्छा हो, उसकी पर्सनैलिटी पूरी की पूरी अच्छी हो। आजकल आप इतनी स्टाइलिंग करके भी वो बात नहीं आती, बेचारे लगे होते हैं स्टाइलिंग, इतनी कुछ पता नहीं क्या कुछ पहना देते हैं लड़कों को, हैं, लेकिन वो बात नहीं आती जो हमारे 90s के जो है हमारे 90s के बॉयज 90s के बैंड्स की जो नेचुरल चार्म और करिश्मा था। और गाने तो सोचे के गाने हम आज भी उनको प्ले करते हैं रेडियो पे, तो आइए सुनते हैं ऐसे गाना दोस्ती के नाम पर। और आप लोग मुझे मैसेज करें आजय समीहा के फेसबुक पेज पे या आजय समीहा इंस्टाग्राम पे, हम बात करें दोस्ती की, आप भी अपने प्यारे दोस्तों के बारे में हमें बताएं, और फिलहाल ये गाना सुनें।

0: चीनी जी आप भी यादों में खो गए है ना, वापस आ जाए। ये गाना है ही ऐसा जो लोगों को यादों में ले जाता है, खासतौर पर कॉलेज डेज में, खासतौर पर टेबल बजा के जो गाने गाने वो हमने बहुत गाए। खैर मैं तो ये गाना ही इतना गाए एनीवेज तो खैर आप लोग मुझे मैसेज करें और बताएं कि आपका सबसे प्यारा सबसे खूबसूरत दोस्त कौन सा है। हमें मैसेज करने का तरीका आप अगर आपको नहीं आता तो मैं क्या करूं, हर वक्त तो बताती रहती हूं मैं। और वो ये है कि अपने मैसेज नहीं, आप मुझे मेरी फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आरजे समिया मेरा नाम है और हम मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। सुनते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
1: इट्स 9:45 AM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय फीनिक्स बैटरीज।
2: फीनिक्स लगा और भूल जा, फीनिक्स लगा और भूल जा।
3: HPL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HPL ब्रांच। HPL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं, कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत जवाबित लागू है।
2: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में ₹15,000 या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या ₹50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
4: This program is brought to you by
5: Is Jashn-e Azadi Fatma Fertilizer ke saath milkar buland kare apne shehar ki shaan
0: and HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
4: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
5: FM247365.
6: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: 8:45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back. Aur nayi gaadi? Sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
0: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account. Jahan khwab, वहां HBL.
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल है. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें. गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें. लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने. मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत.
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
5: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं. ताहम बाज़ औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता. याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है. याद रखें, पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता. अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए. अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं. सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं. ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा. अगर मुकर्रा वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं. शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा. इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम,
6: شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے۔ اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں۔ اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا۔ لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں۔ اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں۔ اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
7: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
8: FM247365

0: your location for maximum music.
1: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
3: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
4: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
5: FM 100 like us on facebook.com/FM247365.
6: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
7: Only music, no RJ talk.
6: This is F.

like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

यस एवरीबॉडी, तो हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज। तो अब आपने करना कुछ यूं है हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। तो इस तरीके कार के जरिए आप लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, अपने हाल हवाल बता सकते हैं, कैसा गुजर रहा है आप सबका दिन और कैसे गुजरे आपके दो दिन, वो दिन जो कि हमें बड़ी डेस्परेटली हम एक्साइटेड थे बारिश को मद्देनजर रखते हुए, और भाई बारिश होगी, अब होगी, तब होगी। अच्छा मजे की बात क्या है कि इस दफा कुछ कराची वालों को ऐसा दर्दनाक धोखा मिला है कि सिस्टम मौजूद है, आसमान पर आप देख रहे हैं कि जी काले काले बादल मौजूद हैं, एकदम से अंधेरा भी छा गया, सब कुछ हो गया, लेकिन भाई बारिश होकर नहीं दी। तो कराची वालों के लिए एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक रहा इन समझे सैटरडे संडे एंड फ्राइडे। तो सैटरडे संडे एंड मंडे, टुडे इज ऑल्सो मंडे, और आज भी माहौल काफी अच्छा है, ऐसा लग रहा है कि आज भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है क्योंकि सिस्टम इज स्टिल एक्टिव, बट अनफॉर्चुनेटली भाई कराची वालों के वो कहते हैं ना कि जी दिल के अरमा आंसू में बह गए, तो बिल्कुल ये सूरत हाल रही कि अब बारिश होगी तब बारिश होगी। भाई बहुत सारे लोग तो बस रेडी थे कि भाई अब बादल आ गए हैं तो बस रेडी रहो, यहां बारिश शुरू हुई और यहां हम नीचे उतरेंगे या फिर छत पर जाएंगे, टेरेस में लोगों ने घंटों घंटों इंतजार किया, बट कराची में बारिश नहीं हुई। यार पूरे पाकिस्तान में बारिश हो रही है, व्हाट इज दिस, हम कराची वाले कब एक्सपीरियंस करेंगे इस बारिश को। और इस दफा इतने स्ट्रांग सिस्टम के आने के बावजूद भी कराची में बारिश नहीं हुई, एंड दिस इज रियली रियली सैड। बिल्कुल ये तो बड़ी एक मैं कहूंगी कि सैड वाइब्स है कि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अल्लाह पाक का इसमें कोई बेहतरी ही है, क्योंकि कराची में ज्यादा अगर बारिश हो जाती तो कराची में जो है वो मजीद हम जो है वो पानी वानी बेयर नहीं कर सकते, शायद इसमें भी अल्लाह पाक की कोई ना कोई मसलियाती थी, क्योंकि इस सिस्टम से सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी जबरदस्त किस्म की बारिश हुई है। वहां कुछ शहरों में कुछ इलाकों में जो है वो सैलाबी सूरत हाल भी वाकई हो गई इस सिस्टम के तहत, लेकिन कराची में अलबत्ता से बारिश नहीं हुई। तो चलो जी होप फॉर द बेस्ट, अभी अगस्त में हमें एक और सिस्टम जरूर मिलेगा और ये हमारा लास्ट सिस्टम होगा जो अगर हमने एक्सपीरियंस कर लिया, बिकॉज 14 अगस्त को तो कराची में बारिश लाजमी तौर पर होती है। नॉट ओनली कराची, पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ कराची को हम इसमें हाईलाइट नहीं करेंगे, लेकिन होती है। तो अब जो समझें कि एक और मजीद हफ्ता है, अगर उसमें बारिश हो गई तो हो गई, वरना तो भाई कराची वाले अब साल 2027 का इंतजार करें। कोई बात नहीं, जहां तेरह दिन गुजर गए वहां ये दिन भी गुजर जाएंगे, लेकिन भाई काफी अफसोसनाक सूरत हाल रही हम कराची वालों के लिए। तभी मजीद मौसम की क्या खबरें उससे भी आप लोगों तक आगाही फराम करेंगे, लेकिन पहले मैंने कहा कि जो सबके ताजा ताजा गम है उन्हें ताजा कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलें जी अब एक अदर ट्रैक की जानिब चलते हैं और आते हैं वापस ट्रैक के बाद।

0: कोई कोई परफॉर्मेंस करता है, कोई जो है वो स्पीच कर रहा होता है, तो वो इतना मजे का टाइम होता है ना कि स्पेशली जब अगस्त में आपके स्कूल खुलते हैं और स्कूल खुलते ही आप जो 14 अगस्त की तैयारी में लग जाते हैं उसमें बड़ा मजा आता है। और ये रौनकें जो है ना वो आपको अपने शहर में जगह जगह पर जो है वो स्टॉल्स नजर आते हैं जिसमें आपको झंडियां मिल रही हैं, और झंडियां तो भाई बड़ी अच्छी लगती हैं, उसको हम जो है वो आटे की लई बनाकर चिपकाया करते हैं। बहुत सारे बच्चे भाई ग्लू स्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वैसे मजबूती के लिए आई मस्ट से कि वो जो एक आटे की लई का मिक्सचर हमारी अम्मियां हमें बनाकर देती थी ना, उस जैसा स्ट्रांग मिक्सचर आपको नहीं मिलेगा। तो ये है कि अभी बच्चों के ये भी मजे हैं कि अभी इतने दिनों बाद जब स्कूल खुले हैं तो साथ ही साथ जो है भाई वो 14 अगस्त की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। तो भाई अब जो अम्मा अब्बा हैं वो अभी स्कूल की तैयारियां करेंगे, फिर वो हरे सफेद कपड़े ढूंढ रहे होंगे और घर को भी सजा रहे होंगे, तो ये बड़ा मजे का एक टाइम होता है। और ये स्कूल लाइफ में, और सिर्फ स्कूल लाइफ में नहीं, एडल्ट लाइफ में भी लोग जो हैं वो अपने ऑफिस में बहुत सारे लोगों के जो है वो इवेंट सेलिब्रेट किया जा रहा होता है, तो इट्स अ वेरी वेरी नाइस टाइम। और भाई अब 14 अगस्त का जिक्र किया ही है मैंने, तो क्यों ना हम भी एक अदद मिली नगमे को शामिल करें, क्योंकि मजा ही ऐसे आता है, क्योंकि अगर एक अदद मिली नगमा शामिल कर लेना तो बहुत मजा आता है। और अभी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि रोजाना एक या दो मिली नगमे जो है वो हम जरूर शामिल करें, क्योंकि भाई 14 अगस्त भी आने वाली है और अगस्त के महीने में जो एक्चुअली में एक्साइटमेंट होती है ना वो होती है 14 अगस्त की। तो चलें जी इसे शामिल करते हैं और फिर हम आते हैं वापस। तो आप लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी या नहीं हमें भी बताइएगा। आते हैं वापस इस मिली नगमे के बाद।
1: पाकिस्तान हासिल करने के लिए

0: ओके, तो मैंने कहा हम जिक्र कर रहे हैं 14 अगस्त का. जी हाँ, जश्न आजादी का जो कि अब हम तकरीबन 11 दिन बाद मनाने वाले हैं इंशाल्लाह. तो मैंने कहा स्कूल का जिक्र हो रहा था तो भाई बच्चों की मसरूफियत पर भी जरूर रोशनी डालेंगे. और 14 अगस्त में जो तैयारियां होती हैं, जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई फंक्शन हो रहा होता है और स्कूल में जो है वो बच्चे अलग अलग चीजें यू नो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, मिली नगमे याद कर रहे होते हैं, उसमें भी जो एक कोई ना कोई उर्दू की मिस्टेक आ रही होती है वो हम अपने अम्मा अब्बा से पूछ रहे होते हैं. तो बड़ा एक मजे का ये टाइम होता है और उसी के साथ साथ मजा यूं भी आ रहा होता है क्योंकि भाई जब 14 अगस्त की तैयारी चल रही होती है ना तो आप बार बार जा रहे होते हैं प्रैक्टिस करने, रिहर्सल करने, तो आपको ये मजा आ रहा होता है कि भाई थोड़ी सी ना पढ़ाई से जान जाती है. और इस बहाने ना बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं, स्पेशली पार्टिसिपेंट्स, और बहुत एक यू नो एक एक्टिविटी रहती है. तो बड़ा एक मजे का टाइम होता है ये स्कूल में. खैर, और इसी के साथ साथ क्योंकि अभी ठेले भी लग गए हैं, स्टॉल्स भी नजर आ रहे हैं 14 अगस्त के सामान के, उसी के साथ साथ मेरी एक बार फिर से रिक्वेस्ट है लोगों से, और मैं हर साल 14 अगस्त पे जरूर कहती हूं कि इतनी प्यारी प्यारी चीजें मिलती हैं, आप उन सबको खरीदें. ये जो बाजे लोग खरीद लेते हैं जो कि अल्लाह लोग जो बजाना शुरू करते हैं, भाई ये क्या पर्पस है, ये कौन सा तरीका है भाई जश्न आजादी मनाने का. और सब लड़कों के हाथ में ना अब ये नजर आना शुरू हो जाते हैं. और इनफैक्ट कल तो मुझे इतनी हंसी आई कि मैंने एक सुपरमार्ट में भी देखा कि वहां पर 14 अगस्त का, क्योंकि ऑब्वियसली 1 अगस्त से सामान मिलना शुरू हो जाता है, तो वहां पर भी ये बाजे मिल रहे थे. मैंने कहा लो भाई, एक तो इन पर पाबंदी लगानी चाहिए, लेकिन अब तो ये सुपरमार्ट में भी दस्तियाब हैं. तो जो जो लोग ये खरीदते हैं, इन्हें बजा रहे होते हैं, मैं उनसे जरूर जानना चाहूंगी कि ये जश्न आजादी मनाने का कौन सा तरीका है, मतलब इसको बजाकर आपको क्या मजा आता है. तो इसका जवाब तो मैं जरूर चाहूंगी कि मैं अपने लिसनर्स की जबानी सुनूं, उन लिसनर्स की जबानी जो इस बाजे को खरीदते हैं और बजाते हैं 14 अगस्त तक, बल्कि 14 अगस्त के बाद तक ही बज रहे होते हैं. और अक्सर औकात मुझे लगता है कि जिन लोगों ने खरीद लिया उनके वालदेन छुपा के रख देते हैं कि अब पूरा साल तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही अगस्त का महीना आता है ना तो वो बच्चे जिद करके निकाल ही लेते हैं. अगर अम्मा अब्बा निकाल के ना दें तो वो खरीद ही लेते हैं. तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि भाई ये 14 अगस्त मनाने का कौन सा तरीका है बाजे बजाकर 14 अगस्त मनाने का. और भी बहुत सारी दीगर एक्टिविटीज होती हैं जिस पे आप जरूर अमल करें, एंजॉय करें, उस तरह मनाएं, अपने नए कपड़े बनाएं सफेद और हरे, या फिर सफेद डिपेंड्स ऑन यू, अब बैच खरीदते हैं. और तो बहुत सारी प्यारी प्यारी एक्सेसरीज मिलती हैं लड़कियों की, तो खैर बड़ी प्यारी प्यारी चीजें मिलती हैं उसमें, वो ब्रेसलेट्स भी होते हैं, अंगूठियां भी होती हैं, अब बैंड मिल रहे होते हैं, बहुत सारी तरह तरह की चीजें मिलती हैं. अच्छा, कपड़े भी अब जो है वो बड़े प्यारे प्यारे मिलने लगे हैं हर तरह के. तो ये एक बड़ी मजे का टाइम होता है. तो देखिए, इतनी सारी चीजें जब अवेलेबल हैं तो आप इन चीजों को खरीदें, ना कि इन बाजों को खरीदें जिनको बजाने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि दिल के कमजोर अफराद के लिए तो ये काफी मुजर है. अगर वो अच्छा खासे चल रहे हो और अचानक से आवाज आए तो बड़ा दिल पे एक धचका लगता है, ये क्या हुआ. तो मेरा तो पैगाम यह है कि आप दीगर चीजों की खरीदारी जरूर करें, इनकी खरीदारी हरगिज ना करें क्योंकि इनका कोई फायदा नहीं है. और लोग जो हैं वो ये भी खरीद रहे होते हैं कि छोटा वाला नहीं बड़ा वाला, जिसकी आवाज जो है वो और तेज तेज आ रही हो. सो आई थिंक इट्स फार बेटर देन कि यार आप लोग कुछ और खरीदें. खैर भाई, ऑलराइट, हमारे पास मैसेजेस भी आना शुरू हो गए हैं. कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है. वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके क्या हाल है वाले हैं. और जिन लोगों ने अभी भी हमारा प्रोग्राम सुनना शुरू किया है, प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल, तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं. इसके लिए आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे. तो इस तरीकाकार के जरिए आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, अपनी अपनी हाजिरी लगाएं और बताएं किस वक्त आप हमें कहां से सुन रहे हैं. जब तक मैं सोच रही हूं कि हम चलते हैं कदर ब्रेक की जानेब और आते हैं वापस ट्रैक के साथ, तो कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक.
1: इट्स 12:45 PM. दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय फीनिक्स बैटरीज.
2: फीनिक्स लगा और भूल जा, फीनिक्स लगा और भूल जा.
3: पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सी औरतों को माली, जिस्मानी, जहनी और जिनसी घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है. चाहे आप किसी के शौहर, वालिद, भाई या बेटे हों, अपना स्ट्रेस और फिक्र को अपनी बीवी, बेटी, बहन या वालिदा पर हरगिज ना निकालें. हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है, ताकि हमारे इदारे उनकी भरपूर मदद कर सकें. अगर आप या आपके जानने वाले घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। होम स्क्रीन पर अपना नाम, फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके साइन अप करें। हंगामी हालात की सूरत में जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें, जिससे मुतल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे। तफसीली शिकायत के लिए सब्स बटन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप तहरीरी शिकायत के साथ वीडियो, तस्वीर और ऑडियो सबूत भी जमा कर सकते हैं। याद रखिए, घरेलू तशद्दुद कानूनन जुर्म है और हम सबको मिलकर इसे रोकना है। तशद्दुद से तहफ्फुज आपका हक है। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
1: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: 100 FM।
5: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: पाकिस्तान में व्हाट्सएप हैकिंग के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। रोजाना आम शहरी, बुजुर्ग, खवातीन, तुलबा और कारोबार से वाबस्ता अफराद अपने व्हाट्सएप अकाउंट से महरूम हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको दो अहम बातों पर रहनुमाई फराहम करेंगे। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो इसे वापस कैसे हासिल किया जा सकता है और मुस्तकबिल में व्हाट्सएप को दोबारा हैक होने से कैसे महफूज रखा जा सकता है। आइए देखते हैं व्हाट्सएप हैक कैसे होता है। पाकिस्तान में आमतौर पर व्हाट्सएप हैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके। आपको व्हाट्सएप या किसी करने वाले के नाम से पैगाम आता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई करना है या ये 6 हिंसों का कोड भेज दे। बाज़ औकात ये पैगाम किसी दोस्त या रिश्तेदार के नंबर से आता है जिसका अकाउंट पहले ही से हैक हो चुका होता है। लोग लाइल्मी या जल्दी में 6 हिंसों का तस्दीकी कोड शेयर कर देते हैं। बस इसी एक गलती से हैकर आपके व्हाट्सएप का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है। याद रखें, व्हाट्सएप का तस्दीकी कोड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। ना व्हाट्सएप खुद मांगता है, ना कोई अदारा और ना कोई दोस्त। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए तो फौरन क्या इकदाम उठाने चाहिए। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो घबराए नहीं, अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप डिलीट करें और दोबारा इंस्टॉल करें। साथ ही अपने दोस्तों और खानदान को किसी और नंबर से इतला दें कि अगर आपके नाम से कोई मशकूक पैगाम आए तो इस पर हरगिज यकीन ना करें। अपना वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड था। व्हाट्सएप आपको SMS या कॉल के जरिए 6 हिंसों का तस्दीकी कोड भेजेगा। ये कोड दर्ज करें। ज्यादातर केसेस में इसी मरहले पर हैकर की रसाई खत्म हो जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस को इजाजत देता है। अगर तस्दीकी कोड ना आ रहा हो या पिन लगा दिया गया हो, अगर हैकर ने आपके अकाउंट पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन पिन लगा दिया है और आप लॉगिन नहीं हो पा रहे, व्हाट्सएप आपको ऑप्शन देता है 7 दिन बाद दोबारा कोशिश करें। 7 दिन बाद व्हाट्सएप आपको बगैर पिन के लॉगिन करने की इजाजत देता है, लेकिन सिर्फ उसी नंबर पर। इस दौरान ये बातें लाजमी याद रखें। सिम कार्ड अपने पास और फॉल रखें। नंबर बंद या सस्पेंड न होने दें। व्हाट्सएप बार बार इंस्टॉल न करें। ईमेल के बगैर अकाउंट फॉल। अगर आपने ईमेल एड्रेस शामिल नहीं किया और पिन भी याद नहीं, व्हाट्सएप फिर भी 7 दिन बाद आपका अकाउंट फॉल कर देता है, बशर्ते कि सिम कार्ड आपके पास हो। सिम कार्ड सबसे अहम है। इजाफी तौर पर आप अपने नंबर और मसले की तफसील के साथ व्हाट्सएप सपोर्ट को ईमेल भी कर सकते हैं। रابطوں को फौरी इतला दें। अकाउंट बहाल होते ही अपने तमाम रابطوں को पैगाम भेजें, मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया था, बराह करम पिछले किसी भी पैगाम या दरख्वास्त को नजरअंदाज करें। इससे आपके दोस्त और खानदान मजीद नुकसान से बच सकते हैं। अब देखते हैं मुस्तकबिल में हैक होने से खुद को कैसे बचाया जा सकता है। 2-स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी फॉलो करें। सेटिंग्स, अकाउंट, پوسٹر ویریفیکیشن یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں. ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے. اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے لیکن کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ انعامات سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں. اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
8: FM 247 365.

Assalam o Alaikum, Pakistan, and Assalam o Alaikum, everyone. This is me, Fatima Khan, and I'm back again. मैं आ चुकी हूँ वापस और आप लोगों से गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी है क्योंकि जी हमारा और आपका साथ होता है 12 से 2 के दरमियान और ये साथ हमारा और आपका कायम व दायम है और इसी के साथ साथ जो है वो हम वापस आ चुके हैं प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में दाखिल हो चुके हैं. आप सब सुन रहे हैं प्रोग्राम लॉन्च टाइम स्पेशल. उसी के साथ साथ भाई 14 अगस्त के भी हम करीब हैं, लगभग 11 दिन रह गए हैं. इंशाल्लाह हम 11 दिन बाद जो है वो जश्न आजादी मनाएंगे और इसी के सिलसिले में मैंने सोचा है कि प्रोग्राम के सेकंड हाफ में हम आपको एक ट्रैक डेडिकेट करते आ रहे हैं. कई सालों से ये रिवायत कायम है तो अब हमने सोचा है कि 14 अगस्त तक प्रोग्राम के सेकंड हाफ में हम कोई ना कोई नेशनल सॉन्ग जो है वो अपने तमाम सुनने वालों को जरूर डेडिकेट करेंगे क्योंकि भाई रिवायत तो हमारी कायम और दायम है. तो क्यों ना एक अदद प्यारे से ट्रैक के साथ आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम के सेकंड हाफ की रिवायत को कायम करते हैं और हारून का ये ट्रैक हम आपको करेंगे डेडिकेट, विच इज बेस्ट ऑफ द बेस्ट. और लास्ट ईयर की अगर बात की जाए, लास्ट ईयर ये ट्रैक बहुत ही ज्यादा मजीद पसंद किया गया था, तक कि बहुत पुराना ट्रैक है. एवरीबडी लव्स दिस और आई एम श्योर कि हर किसी ने अपने बचपन में स्कूल में ना इसमें परफॉर्मेंस की ही होगी. लेकिन लास्ट ईयर ना बड़ा मजा आ रहा था, बहुत ज्यादा इसको पसंद किया जा रहा था जो कि ये वैसे ही बड़ा मशहूर है लेकिन और मजीद इसको पजीराई ना लास्ट ईयर थोड़ी ज्यादा मिली. तो हमने कहा ठीक है जी, इसी ट्रैक को आपको डेडिकेट करते हैं और फिर अपने गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं. सो एंजॉय.

0: जी तो प्रोग्राम के सेकंड हाफ की रिवायत हो गई कायम, यानी कि एक अदर ट्रैक हमने आपको डेडिकेट किया और हमने आपको आज एक नेशनल सॉन्ग जो है डेडिकेट किया है। हमने कहा क्योंकि भाई अब हम 14 अगस्त इंशाल्लाह 11 दिन बाद मनाएंगे, तो क्यों ना रोजाना की बुनियाद पर हम कोई ना कोई एक नेशनल सॉन्ग, एक या दो नेशनल सॉन्ग को जरूर शामिल करेंगे इंशाल्लाह प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल में। खैर जी, लंच टाइम स्पेशल है तो कैसे हो सकता है कि लंच का जिक्र ना किया जाए। तो क्या बना रहे हैं आप, क्या बना लिया है आपने, क्या बनाने का इरादा है, तो भाई आपके लंच में क्या मौजूद है हमें जरूर बताएं। अभी हमने कुछ देर पहले काफी फलों का जिक्र किया है, क्या उससे मुंसलिक कोई चीज है या फिर कुछ और आपके लंच में मौजूद है। इस वक्त जो है वो अच्छे मौसम का इंतजार करके बेसन तो ले आए लेकिन पकौड़े नहीं बन पाए क्योंकि कराची में जो है वो बारिश हुई नहीं, तो कढ़ी बनाने का तो कहीं इरादा नहीं है। तो भाई आपके लंच में क्या बन रहा है हमें जरूर बताएं, जल्दी से मैसेज करके बताएं कि भाई इस वक्त आपके लंच में क्या मौजूद है। और इस मैसेज करने के लिए आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर आपने सेंड कर देना है 3636 पे। तो हमें जल्दी से मैसेज करें और बताएं कि भाई आपके लंच में इस वक्त क्या मौजूद है। वो कढ़ाई है, वो कड़ी है, वो बिरयानी है, वो दाल चावल है, वो छोले चावल हैं, जो भी आपके लंच में मौजूद है वो आप हमें जरूर बताएं क्योंकि हम कर रहे हैं आपके मैसेजेस का इंतजार बेसब्री से। क्योंकि भाई लंच की गुफ्तगू तो लाजमी होती है जो कि हम करते हैं। तो चलें जी, आपकी जबानी जानते हैं कि आपके लंच में क्या मौजूद है। जब तक आप हमें बता रहे हैं हम चलते हैं एक अदर ट्रैक की जानिब, आते हैं वापस ट्रैक के बाद।
1: You know, I was wondering, you know, if she could keep on, because the force has got a lot of power, and it makes me feel like

तो मैंने कहा भाई अगर आज ऐसा दिन मनाया जा रहा है तो मैं भी अपने सुनने वालों को बता देती हूँ कि ऐसा दिन मनाया जा रहा है, तो आप भी कर लें सफाई। और इसी के साथ साथ हम चलते हैं ट्रैक की जाने, बातें वापस ट्रैक के बाद।

ओके सो एक प्यारे से ट्रैक के साथ हम आ चुके हैं वापस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारेंगे क्योंकि प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का वक्त जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है. हमारे पास एक मिनट मौजूद है जो कि हम आपके साथ गुजारेंगे, और एक से डेढ़ मिनट हम आपके साथ गुजारेंगे और आपको अच्छे अच्छे मशवरे देंगे. इसके कुछ देर पहले हम आपसे कह रहे थे कि डीप पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ना कि कोल्ड ड्रिंक्स ना कि फिजी ड्रिंक्स. उसी के साथ साथ हमारा ये भी पैगाम है कि जी आप अपनी मसरूफ जिंदगी से थोड़ा सा वक्त जरूर निकालें और थोड़ी बहुत चहलकदमी जरूर करें. ये आपके मूड को बहुत बेहतर करती है, आपके माइंड को फ्रेश करती है, आपको फिट करती है, आपको एक्टिव करती है, और उसी के साथ साथ आपकी कैलोरीज को बर्न भी करती है. तो यानी कि कुछ देर की वॉक के अगर फवायद के बारे में बात की जाए तो जी हाँ, लातादाद फवायद हैं. और अगर आपको चलने का शौक है और आप मसरूफियत की बिना पर नहीं चलते तो जरूर चलें क्योंकि इसके बहुत सारे फवायद हैं. आप एक्टिव हो जाएंगे, आप फिट हो जाएंगे. आजकल हम बहुत सारे काम ना इसकी वजह से नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, लेकिन जी टाइम निकालना भी है बहुत जरूरी. तो थोड़ा बहुत टाइम निकालें खुद के लिए, थोड़ी बहुत वॉक करें, पानी पिएं, फिजिकल एक्टिविटी करें, या वो काम जरूर करें जिसे करने के बाद आपको अच्छा लगता है, आपका मूड फ्रेश हो जाता है. अपने पुराने दोस्तों से भी हाय हेलो जरूर करें क्योंकि बहुत वक्त हो चुका है. अगर आपने उनसे बात नहीं की तो उन्हें जरूर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं और उन्हें याद दिलाएं कि जी आपको वो अभी भी याद हैं. सो हेलो हाय करने से जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है, आप भी को भी अच्छा लगता है, आपके दोस्तों को भी अच्छा लगता है, और आप पता चलता है कि जी इतने टाइम से उनकी जिंदगी में क्या क्या तब्दीली आ गई है. तो ऐसे दोस्त और ऐसे रिश्तेदारों को भी जरूर आप हाय हेलो करें. और इसी के साथ साथ हमें दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह होगी आप लोगों से मुलाकात कल फिर सेम प्लेस सेम टाइम. तो सी यू ऑल इंशाल्लाह टुमारो, अंटिल एंड अनलेस टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.

0: This is FM 100.
1: Come on.
2: Baatein kar rahi hai ghanta.

जैज कैश के साथ पाओ फिर से एक करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के

0: बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
1: 100 FM।
0: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैस कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
2: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
3: Brand new Suzuki Alto jeetna chahte hain? Bas apne Easy Paisa account mein 15,000 rupaye ya usse zyada deposit kare, balance 20 din tak maintain kare aur lucky draw mein 4 Suzuki Alto ya 50,000 ke 100 cash prizes jeetne ka mauka paaye. To intezar kis baat ka? Abhi deposit kare aur jeete. Easy Paisa Digital Bank, easy wala bank.
2: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. ऐसी ऑफर्स अब कहाँ?
4: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत, कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: 100 FM।
5: छम छम छम किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

ना रेडियो डिजाइन इसलिए किया गया है कि आपसे बातें की जाए, और क्योंकि बरसात शुरू हो गई है, मॉनसून शुरू हो गया है, बारिशें शुरू हो गई हैं, तो प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज अपने लिए, अपने प्यारों के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करें जिससे आप जिंदगी के प्रोटोकॉल, सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स, अपने प्रोटोकॉल्स को मेंटेन कर सकें। हर चीज दुनिया भर में होती है, लेकिन हम जहां होते हैं हम वहीं की बात करें, हम वहीं के लिए अपने आप को तैयार करें, तो ये बड़ा जरूरी है। क्या कुछ होगा बारिशों में, क्या कुछ कर सकते हैं हेल्थ के लिए, वेयरिंग के लिए क्या हो सकता है, कितना किया जाए, और स्पेशली कराची के लिए हम क्या किस तरह सोच सकते हैं, तो डेफिनेटली आज हम बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मॉनसून में बड़ा आपको अपना ख्याल रखना होता है।

जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम कराची। कैसे आप लोग वीकेंड को एंजॉय किया? धुआंधार तरीके से कराची ने, और यकीनन ड्रिजलिंग भी कहीं कहीं ज्यादा भी, कहीं कहीं कम भी। ये बिल्कुल वही दर्द होता है, ये बिल्कुल वही एहसास होता है, ये वही लम्हा होता है जब कोई ये कहता है कि यार मैंने इस बात को इतना फील किया और तुमने इतना आसान भी नहीं किया, मैंने इस चीज को इतना। हर इंसान, हर जगह, हर मौसम जो है वो अपना रिएक्शन दिखा रहा होता है। जनाब आज भी जिनी ना रेडियो में बहुत सारी बातें करेंगे, और क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल।

0: जी जनाब, और आज बात हो रही है मॉनसून की, जो कि स्टार्ट हो चुका है। अगस्त जो है वो आ गया है और उसने बता दिया है कि जी खूब पकोड़े शकोड़े फ्राइड आइटम निकाल लो और एंजॉय कर लो, क्योंकि अब मैं सर चढ़ के बोलने वाला हूं, बरसने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। आज बात हो रही है प्रोटोकॉल्स की, कि किस तरह हमने बारिश में अपने लिए बहुत चीजों को मेंटेन करना है। और उसमें सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी चीज है, वो ये है कि आपका खाना पीना, क्योंकि वायरल बहुत होता है, इन्फेक्शंस बहुत होते हैं, और चाहे वो वेजीज हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, क्वालिटी पे फर्क पड़ रहा होता है, हाइजीन पे फर्क पड़ रहा होता है इस तमाम चीजों की। तो बड़ा, अगर आपके घर में कोई पैट है या अगर आप खुद भी इस तरह की और जॉब्स कर रहे होते हैं, कुछ होती हैं ट्रैवलिंग जॉब्स होती हैं, कुछ होती हैं इस तरह की जॉब्स होती हैं, तो प्लीज कंट्रोल कीजिएगा बाहर के खाने से, और कोशिश कीजिएगा कि बड़ा समअप करके चलें चीजों को। बहुत ज्यादा खाना या बहुत हैवी खाना भी प्लीज ना खाइएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है ना आप खा रहे होते हैं और अपनी बॉडी को दे रहे होते हैं, तो पता ही ये चलता है कि जनाब आपकी बॉडी जो है वो इस मूड में ही नहीं है, इस जोन में ही नहीं है कि वो उसको अडॉप्ट करे या वो उसे डाइजेस्ट करे। तो बड़ा देखभाल के चीजों को किया करें, ताकि आप किसी भी तरह से नई किसी चीज में मुब्तला ना हो जाए।
1: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
2: This program is brought to you by
1: Step School se foundation ho strong. Call now at 0311117837.
3: Dengue ek khatarnak bimari hai jo machhar ke kaatne se phailti hai. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो, तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM247365

0: पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: 100 FM।
2: छम छम छम किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

अगर आप वाइल्ड को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि भाई हॉट वेदर है और गर्मी को फील ज्यादा करते हैं, तो उसकी वजह से अगर आप कूलिंग इफेक्ट के लिए, कूलिंग फील के लिए आप वाइट को लेना चाहते हैं, तो बस कंप्लीट वाइट ड्रेस ना पहने, आप उसके साथ मिक्स एंड मैच करके पहने, तो वो आपको थोड़ा सा जो है रिलीफ देगा.

0: शुभकामनाएं आगे बढ़ती हैं। बेटी पढ़ाओ, मजबूत बनाओ।
1: facebook.com/fm247365
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
1: FM 100 Like us on facebook.com/fm247365 FM 247365

0: खर्चे खर्चे।
1: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
1: This program is brought to you by
5: Is Jashn-e Azadi Fatma Fertilizer ke saath milkar buland kare apne shehar ki shaan
2: and HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.

like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रास्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
1: हमने अपने आप को से तीन बार मौत देखा।
2: टाइम से मनु ऐसे ही कि मैं हूँ कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
3: फिर उन्होंने साड़ियाँ वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया।
0: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
4: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
0: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क्याम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी। एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरूने मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने। हुकूमत पाकिस्तान।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैज कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है, और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है। ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराह कोनी या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधही और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है। अपने ऑनलाइन तहफ्फुज के पेश नज़र ये इकदाम जरूर उठाएं। जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें। अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट ऐप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें। अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स। डिजिटल तहफ्फुज का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है। बरवक्त और पेशगी इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।
7: FM 24/7 365 FM 24/7 365.
8: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
9: Only music, no RJ talk.
8: This is FM 100.
10: Come on.

0: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. वी मेक लर्निंग फन फ्रॉम प्राइमरी ईयर्स एजुकेशन थ्रू स्टीम अप्रोच, ताकि आपका बच्चा डेवलप कर सके स्ट्रॉन्ग साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड मैथमेटिक्स स्किल्स. एडमिशन्स ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837.
1: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं. तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
2: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
3: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ. जश्ने आजादी मुबारक.
2: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
4: This program is brought to you by
5: Is Jashn Azadi Fatma Fertilizer ke saath milkar buland kare apne shehar ki shaan.
4: And HBL Freedom Account. Jahan khwab wahan HBL.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkhan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamu alaikum, Pakistan.
2: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
3: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khaab, wahan HBL.
4: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
5: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
2: This program is brought to you by
6: Is Chashne Azadi Fatma Fertilizer ke saath milkar buland kare apne shehar ki shaan
3: and HBL Freedom Account jahan khwab wahan HBL

Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: से खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
1: हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान। इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान। कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैशटैग दिल से सरसब्ज के साथ सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात। तो आओ दिल से देखें सरसब्ज पाकिस्तान।
2: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। वी मेक लर्निंग फन फ्रॉम प्राइमरी इयर्स एजुकेशन थ्रू स्टीम अप्रोच, ताकि आपका बच्चा डेवलप कर सके।

0: आपका बच्चा डेवलप कर सके स्ट्रॉन्ग साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड मैथमेटिक्स स्किल्स. एडमिशंस ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837.
1: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं. तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
2: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ. जश्न आजादी मुबारक.
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback और नई गाड़ी सिर्फ स्कूल शूज पर. ऐसी ऑफर्स अब कहाँ?
4: PTCL Flash Fiber आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ. तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं. कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराय तो जवाबित लागू है.
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback और नई गाड़ी सिर्फ स्कूल शूज पर. ऐसी ऑफर्स अब कहाँ?
5: 100 FM.
6: चम चम चम, किताबें लेके निकले हम. अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम.

Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: You know what's out here on the street? Tankara! Tell them!
1: It's 6:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाए सिर्फ ₹4,999 में और पाए फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शरायत सवाबित लागू है।
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
4: This program is brought to you by
5: Is Jashn-e Azadi Fatma Fertilizer ke saath milkar buland kare apne shehar ki shaan
0: and HBL Freedom Account jahan khwab wahan HBL and
6: Candyland Non-stop fun karte jao
0: and
7: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
0: 100 FM.
8: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
9: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
0: FM 100. Like us on facebook.com/fm247365.
10: FM 247365.
11: You are now.

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
1: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
0: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
1: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
0: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।
3: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रूपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रूपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
1: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
3: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
5: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए चैट कैश है ना।
6: PDCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein aur paaye free Shock Android TV Box worth ₹15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPDCL app download karke subscribe karein. Terms and conditions apply. Sharaat zawabit lagu hain.
4: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
7: Kahin anjaane mein aap dehshatgardon ki mali muawnat to nahi kar rahe? Hoshyar rahein, muhtaat rahein. Apna bank account kisi dusre fard ko hargiz istemal na karne dein. Aur na hi kisi anjaan account mein rakam muntakil karein. Hundi, hawala ya bank account ke zariye دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے۔ حکومت پاکستان۔
8: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
9: ایف ایم 100 لائک اس آن facebook.com/fm247365
10: fm247365
11: Let's celebrate
12: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
10: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
13: Evening drive time.

चलती हवा ने दिल सताया. My eyes are closed but I can see दिल लबदा ठिकाना न कोई बहाना न कोई फसाना.

0: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
1: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
2: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
4: PTCL Flash Fiber Azadi offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein aur paaye free Shock Android TV box worth ₹15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शर्त जवाबित लागू हैं।
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back और नई गाड़ी सिर्फ स्कूल शूज पर। ऐसी ऑफर्स अब कहां?
5: 100 FM

0: 100 FM.
1: छम छम छम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

Alright, Ray Friends, welcome back to the Ever So Radio 100 Pakistan. This is very much me, myself, and IoT show on the top, all the way till 8 this night. And of course, keeping in mind some updates also that I need to be sharing with you people. Aap khole apna HBL Freedom account aur hasil kare muft IBFT, muft checkbox aur muft online banking ki sahulat. Account khulne ka bahut aasan tarika hai. अकाउंट खुलवाएं डिजिटली या विजिट करें अपने करीबी HBL ब्रांच और अपने HBL मोबाइल ऐप के साथ बैंकिंग का नया अंदाज एक्सपीरियंस करें HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान.

0: It's 7:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
1: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.

0: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: PTCL Flash Fiber Azadi Offer लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं Free Shock Android TV Box worth ₹15,000, Free 100 Mbps Internet Speed 6 महीने के लिए, 500 All Net Minutes और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। Call 1218 या UPTCL App डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। Terms and Conditions Apply, शराइत सवाबित लागू हैं।
2: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
3: Tezi se phailti digital duniya ek zabardast salahiyat ke saath saath ek aham zimmedari bhi. Mazhabi, firqa varana ya nasli buniyad par nafrat angezi, dehshatgardi ki targhib se mutalliq kisi bhi tarah ka mawad phailana, electronic jalsazi, spamming, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतलका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफादे आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
7: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
6: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
8: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
7: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें इससे क्या?
6: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ फॉक्स से ये कम नहीं।
9: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
7: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
9: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
6: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
7: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
6: आइए वेट से आगे का सोचें।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
10: ईमेल हर अदारे के लिए एक इंतहाई अहम ज़राए इब्लाग है, लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है। साइबर मुजरिमों की जानिब से हुकूमती और निजी शोबे के मुलाज़मीन को मुसलसल फिशिंग ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इनका क्या मकसद है? आपकी लॉगिन तफसीलात चोरी करना, सिस्टम्स को रैंसमवेयर से मुतासिर करना या गैर मजाज रसाई? महफूज रहने के लिए हमेशा ये बेहतरीन तरीके अपनाएं। हमेशा भेजने वाले की शनाख्त चेक करें, खसूसन एड्रेस। हमेशा अटैचमेंट की फाइल एक्सटेंशन चेक करें। PTA.txt महफूज है, लेकिन PTA.txt.exe नुकसानदेह साबित हो सकती है। अटैचमेंट खोलने से पहले जरूर स्कैन करें। ईमेल इस्तेमाल करने के बाद हमेशा लॉग आउट या साइन आउट करें। इन खतरनाक आदतों से हमेशा बचें। सरकारी ईमेल को जाती या गैर सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल न करें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले असल URL जरूर चेक करें। क्लिक करने से पहले एक बार जरूर देखें। अपना ईमेल पासवर्ड किसी के साथ हरगिज शेयर न करें। पासवर्ड, OTP या हसास मालूमात ईमेल के जरिए कभी भी न भेजें। हैकर्स अक्सर फौरी कार्रवाई, धमकी, लालच या झूठे वार्निंग साइंस जरूर देते हैं ताकि आप घबराकर फौरन क्लिक कर दें। अगर कोई ईमेल बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा पुरकशिश और गैर मामूली तौर पर मशकूक लगे तो एक बार जरूर रुक जाएं और इसकी तस्दीक करें। फिशिंग ईमेल से कैसे बचें? अपने आप को और अपने अदारे को महफूज रखने के लिए धमकी आमेज या जज्बाती जुबान वाली ईमेल से मोहतात रहें। नामालूम या शॉर्ट लिंक्स पर हरगिज क्लिक ना करें। भेजने वाले का मुकम्मल ईमेल एड्रेस जरूर चेक करें। अटैचमेंट से खास तौर पर मोहतात रहें, खुसूसन exe.bat.vbs.msi और दीगर एग्जीक्यूटेबल फाइल से लोगो और ग्राफिक्स आसानी से जाली बनाए जा सकते हैं। इन पर अंधा एतमाद ना करें। किसी भी मशकूक ईमेल की फौरन अपने अदारे की IT टीम को इतला करें। आपकी होशियारी ही पहली दिफाई लाइन है। होशियार रहें, महफूज रहें। ये पैगाम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PTA।
11: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
12: FM 24/7 365 FM 24/7 365.
13: All right, great friends, this is going to be my final song for this evening. It's by Abdullah Siddiqui. It's called Resistance, which I really don't have right now. Anyway, thank you so much. I'll catch you guys tomorrow.

0: FM 100's time check. It's 8 p.m.
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
0: 100 FM
2: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
4: PTCL Flash Fiber Azadi offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein aur paaye free Shock Android TV box worth ₹15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शर्त जवाबित लागू हैं।
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback और नई गाड़ी सिर्फ school shoes पर। ऐसी ऑफर्स अब कहाँ?
0: Like us on facebook.com/fm247365 fm247365 fm100 31 saal fm100 aapki awaaz. Assalamu alaikum pakistan
5: assalamu alaikum pakistan

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: FM 247 365.

0: It's 8:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
0: 100 FM
2: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
4: PDCL Flash Fiber Azadi offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein aur paaye free Shock Android TV box worth ₹15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPDCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शर्तें जवाबित लागू हैं।
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback और नई गाड़ी सिर्फ school shoes पर। ऐसी ऑफर्स अब कहाँ?
0: 100 FM
5: चम चम चम किताबें लेके निकले हम। अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: FM 100's time check. It's 9 p.m.
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें.
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीमिया खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम. Across Pakistan, this is FM 100.
3: Assalamu alaikum, Pakistan.
0: Azan-e-Isha, pesh ki ja rahi hai. Sufi Soap, special quality ke taawun se.
4: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 ke sab sunne walon ko, Assalamu alaikum. Karachi aur uske mazafat mein, Azan-e-Isha ka waqt hua chahta hai.

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफाद आमा के लिए वजारत इत्तिलात व नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिल सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
2: 100 FM।
4: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
5: PDCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाए सिर्फ ₹4,999 में और पाए फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPDCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शर्त जवाबित लागू है।
6: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
7: Bain al-aqwami safar par rawana hone wale mutawajjih hon. Aisi online apps aur platforms se ijtinab kare jo paison ki ivaz kisi namaloom shakhs ka saman aapke apne saman ke sath le jane ke liye karti hai. ये आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है।
9: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है।
10: घर के अफराद और आमदन में तवाज़ुन
11: हमारी जिम्मेदारी है। खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: Like us on facebook.com/fm247365
12: Let's celebrate
1: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
12: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: हेलो हेलो माइक चेक 1 2 3 अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान सभी सुनने वालों को आयाज अहमद की जानिब से आदाब। क्या हाल है, कैसे मिजाज शरीफ है? उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे, ठीक ठाक होंगे। सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो चैनल FM 100 और जनाब साथ साथ मैसेजेस भी करते हैं आपके एचआर स्पेस, टेक्स्ट करेंगे सेंड कर देंगे 3636 पर। दिन है आज मंडे और मंडे वाले दिन में आपको जरा पुराने गाने क्लासिक गाने सुनाता हूँ, पाकिस्तानी फिल्मी गाने। लेजेंडरी आर्टिस्ट मेहंदी हसन नूर जहां, क्या क्या नाम, नाहिद अख्तर, मैं ना ए नैयर, रंगीला जी, अहमद रुश्दी, एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट। गजलों की बात करें तो वहां गुलाम अब्बास याद आ जाते हैं, मुन्नी बेगम याद आ जाती है, अमानत अली साहब याद आ जाते हैं, फरीदा खानम भी। ये अब ऐसे क्यों नहीं फनकार पैदा हो रहे, क्या वजह हो सकती है? टाइम लगता है। अच्छा जनाब हमारे साथ नदीम अंसारी मौजूद है, नदीम भाई को कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी दिल चाह रहा मैसेज करने का तो के चाह स्पेस टेक्स्ट करेंगे और सेंड कर देंगे 3636 पर। अच्छे प्यारे मैसेज, किसी किस्म की बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। अच्छा बदतमीजी से मुझे याद आया यार, फेसबुक में मैं देखता हूँ बाज आर्टिस्ट बाज फनकारों के मैसेजेस अपनी क्लिप बना के भेजते हैं, तस्वीरें बनाई हुई होती है, फोटो बनाए हुए होते हैं, क्लिप्स बनाए हुए होते हैं, उनके नीचे जब कमेंट्स पढ़ता हूँ ना मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ। बुरे यार, मतलब किसी की खुशी हमसे नहीं देखी जा रही, हटी हुई है फुल टाइम, खास तौर पे अगर आर्टिस्ट कोई फीमेल है और वो घूम रही है कहीं फिर रही है खाने की जगह पे, मतलब होता है यार इंसान के होता है, अच्छी जगह चले जाए चलो यार ये देखो यार खुशी में, नीचे जो अगर आप कमेंट पढ़ ले तो शौकी बदतमीज तमीज नहीं, ये तो मैं तमीज वाले पढ़ रहा हूँ, बाकी वाले मैं नहीं पढ़ सकता और यार बोल भी नहीं सकता। सबसे पहले जो है ना मजा ये आता है करेक्टर पे फॉरन अटैक, नोट करना आप, जो आदमी खुद कुछ नहीं कर सकता वो गुस्से में यही करेगा, एकदम दूसरे का बुरा भला, क्योंकि खुद तो कुछ किया नहीं, घर में फारिग बैठा हुआ और फुल उसकी हटी हुई, ये देखो यार ये आदमी कहाँ घूम रहा है, कभी दुबई की कभी कहाँ की, अब एंजॉय कर रहा है यार, इंसानों की खुशी में ना खुश होना सीखे। आज का तो मैं सोच रहा हूँ यही टॉपिक रख दूँ, क्यों नहीं हम खुश हो रहे किसी को देख के, हटी हुई है फुल टाइम एक दूसरे से हटी हुई है यार, क्यों घूम रहे अच्छी जगह पे, इस पे बात करेंगे लेकिन जरा कमर्शियल ब्रेक के बाद। मैसेज करेंगे एक दफा फिर मैं आपको बता दूं कि चाय स्पेस टेक्स करेंगे सेंड करेंगे 3636 पर।
1: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ, तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शर्त जवाबित लागू है।
2: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी, एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी, एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है, लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान,
3: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं हमारे जहनों में लड़ी जा रही है, अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं मालूमात हैं, और निशाना हम सब, रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है, वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے، جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے، کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
5: Active. Yummy. Adorable. Zabardast. Ye pyaas to suno yaar.

है जनाब. वेलकम बैक सुन रहे एफएम 100 और साथ साथ मैसेजेस आपके पहुंच रहे 3636 पर. अच्छा जनाब, अगस्त का महीना और अगस्त के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूं, नेशनल गानों की भरमार. वैसे भी मुझे पसंद है नेशनल सॉन्ग्स, लेकिन अगस्त के मंथ में तो खास तौर पर. तो आगाज करेंगे

0: Friday, it's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं फिर 100 और साथ ही साथ मैसेजेस भी पहुंच रहे हैं। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान, खान साहब की एंट्री याद आ गई, इमरान खान के जलसे होते थे तो इस सॉन्ग पे जो है वो आते थे। क्या बात, क्या दौर था भाई वो भी। अच्छा पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है इस पे भी एक बहस हो सकती है अच्छी खासी, कितना प्यारा मुल्क और इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ की अवाम के साथ, खास तौर पर अवाम के साथ बहुत जरूरी है। और आवाज उठाने वाले को भी कह रहे भाई साइड पे हो जाओ, आवाज भी नहीं उठानी, गुड खाते रहो और आवाज नहीं उठानी, ठीक हो गया भाई। अच्छा मैसेज चिजाने बढ़ते हैं बिलावल गिजरी से, अयाज भाई आपको, सुंबल जी को, कादिर भाई को और तमाम लिसनर्स को अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है? हाल आपके सामने मैंने बयान कर दिया, बोल नहीं सकते आप अपने हाल, अगर आपने हाल बोल दिया तो फिर आप हाल और माजी मुस्तक माजी का पसमंदर में चले जाएंगे, हाल और मुस्तकबिल फारिग। रमजान पठान का मैसेज आया, अयाज भाई हम आ गए हैं, अयाज भाई आपको, बिलावल को और तमाम निस्टर को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरे भाई, वालेकुम सलाम। संजीदा जी भी आ गई हैं, अस्सलाम वालेकुम, इतने प्यार से वेलकम, दुआएं, बहुत शुक्रिया संजीदा, बहुत शुक्रिया। 1 अप्रैल को हम सब के बहुत अच्छे गयास की सालगिरह थी, 1 अप्रैल को तो अप्रैल फूल होता है, 1 अगस्त को, अगस्त को संजीदा 1 अगस्त को ये आइटम दुनिया में तशरीफ लाए थे, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त काफी सारे महीने गुजरने के बाद गयासुद्दीन बलबन आए। तो चले जनाब गयास, हैप्पी बर्थडे रिलेटेड। और इसके अलावा भाई बदतमीजी तो, हाँ जनाब मैं वही कह रहा था कि यार फेसबुक के ऊपर मैं देखता रहता हूँ कमेंट्स पे, बेचारे अच्छी बात भी कोई कर रहा बेचारा आदमी तो उस पे भी आके उसको भी नीचे आके इतना बुरा भला कह रहा, क्यों यार इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों? बस वो एक्टिंग वाले बेचारे अपने जो है नए नए आर्टिस्ट हैं वो लगा लेते हैं, या कोई पुराने भी होते हैं लगा, तो बस तो तारीफें हो रही थी अक्सर ऐसे ओवर एक्टिंग कर रहा है। बट बेटा तेरे पास मीटर है क्या? जो तू लिख रहा है, जो लिख रहा है ये ओवर एक्टिंग वाला, उसका खुद की क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या वो कहना चाह रहा है, मतलब क्या किया दुनिया में उसने जो वो ये कह रहा है ओवर एक्टिंग। बहुत मेरी मेरी मैं भी तुम तो मैं हैरान हो जाता हूँ यार, मतलब इसको कैसे पता चल गया कि ये ओवर है ये अंडर है क्या है, मतलब कोई होगा ना कोई नहीं ना दुनिया में है। अच्छा भाई इसके अलावा संजीदा कहनी पिछले 3 कामयाब शो मुबारक, बड़ी मेहरबानी, मोहब्बत प्यार है आपका, बहुत शुक्रिया। और तेरा पाकिस्तान है मेरा, बिल्कुल जनाब तेरा मेरा पाकिस्तान, और उसके साथ हम क्या कर रहे हैं ये भी आपने जिक्र करना है। मिसेस फारूक आ गई हैं, कह रही है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती, आमीन, आपको भी, आपको भी मिसेस फारूक। और बस हंसती ना हंसती मुस्कुराती बहुत प्यारी लगती। सलाम कैसे हैं सबको, सलाम जरी नूर। वालेकुम सलाम जरी नूर, आप बताएं कैसी तबीयत है आपकी। अच्छा जनाब 9:30 हो गया टाइम, और 9:30 पे क्या होता है ब्रेक होती है, और वो भी 3 मिनट की, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, सुनते रहे FM 100। जिन्होंने अभी रेडियो से टॉन किया है उनको मैं बता दूं मैसेज करने का अगर मूड हो रहा है, दिल चाह रहा है कि ये चाय स्पेस टेक्स्ट करेंगे सेंड करेंगे 3636 पर।
3: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है, जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
4: 100 FM
3: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम, और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
5: PDCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPDCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शर्तें सवाबित लागू हैं।
4: 100 FM।
6: छम छम छम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

जिना वेलकम बैक सुन रहे हैं फिल्म 100 का आतिर बख्श बलोच कह रहे हैं एन ए भाई एन ए किथे ये अयाज अहमद है एन ए तो भी घर में खराटे ले रहे होंगे नहीं खराटे तो नहीं ले रहा होगा खाने वाने खा रहा होगा डिनर कर रहा होगा और कह रहे हैं कि एन ए भाई आपको बिलावल संजू और सबको सलाम दो चले जाना बहरहाल मैं अयाज अहमद हूँ कादिर भाई इसके अलावा फायजा अली क्या हाल है फायजा मैं ठीक हूँ आप बतलाइए तबीयत कैसी है बिलावल कहने सर पाकिस्तान ही तो पाकिस्तान है अब यही तो बात है सर यही तो बात है पाकिस्तान है तो हम है पाकिस्तान हमारी पहचान है नो डाउट अबाउट यार मोहब्बत है ना जब भी अगर हम कुछ कह भी देते हैं या कोई ऐसी बात हमारे दिल से निकलती है तो उसकी वजह यही है कि मोहब्बत है पाकिस्तान से पाकिस्तान से मोहब्बत ना हो तो फिर हमें क्या है कि नहीं ओए होए क्या कहने जनाब क्या कहने अस्मा जी आ गई अस्मा हुसैन क्या हाल है आपके ठीक हैं मैं तो बिल्कुल ठीक वालेकुम अस्सलाम कहनी सुन रही हूँ शुक्र है आप सुन रही हैं बहुत कम सुनती हैं लेकिन सुन लेती हैं संजू ने शिकायत लगाई कि आप की बहुत क्या आपकी बहुत छुट्टियां करने लगी ये आपकी शिकायत लगाई या मेरी शिकायत लगाई है मैं भी छुट्टियां वैसे टिका के कर रहा हूँ लेकिन मैं क्या करूँ काम भी तो है ना अच्छा भाई गयासुद्दीन बलबन आ गए मुल्तान से जिनकी अभी दो चार दिन पहले यानी 1 अगस्त को जाती बर्थडे थी गयासुद्दीन बलबन हैप्पी बर्थडे पूरा हफ्ता हमने आपकी जो है ना बर्थडे मनानी है और अलिफ नून के फैन है बहुत फैन है ये मुझे भी एक क्लिप नजर आया मैंने इनको फॉरवर्ड कर दिया कहने मुझको भी एक सॉन्ग डेडिकेट कर दें अच्छा अब क्योंकि मैसेजेस का दौर है तो पहले वक्तों में खतों का होता तो गानों में खतों की बात होती तो गयास भाई आप इस खत को जो है ना मैसेज समझ लीजिए व्हाट्सएप समझ लीजिए कि माला जी जो है ना व्हाट्सएप कह रही है उस जमाने में क्योंकि खत था तो इस गाने में खत का जिक्र है तो ये मैं आपको डेडिकेट कर देता हूं आपकी बर्थडे पे हैप्पी बर्थडे वंस अगेन खुश रहें और इंजॉय करें इस ट्रैक को

0: हैं जनाब, वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और साथ ही साथ मैसेजेस भी 3636 पर। संजीदा जी बहुत शुक्रिया गाने पसंद करने का, और कहने में शिकायत आपकी लगाई थी मैंने कि आप बहुत छुट्टियां करा दिया। मैं क्या करूं, मैं बस कामों में मसरूफ हूं। तो असमा जी आपने भी डांटा नहीं है। और भाई नया रेडियो स्टेशन आपने ज्वाइन किया, कैसा लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस है? है तो अच्छा। वो अच्छा जनाब, इसके अलावा मिसेस फारूक बहुत शुक्रिया सॉन्ग्स पसंद करने का। और बिलावल भाई जरा मैच की जरा अपडेट तो दो, टेस्ट मैच चल रहा है, 5 खिलाड़ी कल आउट कर दिए थे पाकिस्तान ने, लेकिन फिर बहुत सारा स्कोर भी दे दिया। हालांकि 4 विकेटें बड़ी जल्दी गिर गई थी, 3 या 4 विकेटें बहुत जल्दी गिर गई। उसके बाद दो मेरा खास से बड़ी अच्छी अच्छी पार्टनरशिप लग गई। तो ये भी सूरत है पाकिस्तान के खिलाड़ी यार, मौके को ना कैश, कहते हैं ना जिसको मौके मिलते हैं लेकिन अवेल नहीं कर पा रहे। ओए होए होए होए, नादिया मलिक आ गई भाई यूके से। नादिया क्या हाल है, वालेकुम अदाब, वालेकुम अदाब, अदाब अर्ज किया उन्होंने। अच्छा जनाब, और कह रही इसमें आपको मैसेज करके दूसरा चैनल लगा हुआ था, कह रही हैं कमेंट्स पढ़ लिए। अच्छा चले उनको उनके हाल पे छोड़ दें, जहां वो घूम रही है देख सुन रही है, सुनने दें आप। अच्छा जनाब, टाइम मैंने आपको बताना है और उसके बाद 5 मिनट की ब्रेक भी है। तो दोस्तों सुनते रहें FM 100, मैसेज करेंगे KHR स्पेस, टेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे 3636 पर। तो दोस्तों मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix
2: laga aur bhul ja. PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein aur paaye free Shock Android TV box worth ₹15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe karein. Terms and conditions apply. Sharaat to sawabit lagu hai.
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा ना होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस फाल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जैज सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342#। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटिए।
6: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
5: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखें, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की मनसूखे से मुतालिक किसी भी मसले के हल के लिए नादरा से रजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफाशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो। अगर आपकी सिम किसी वफाशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है तो कानूनी वारिस मुतलका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवा कर सिम की मलकियत अपने नाम करवा सकते हैं। शनाख्ती कार्ड की बरवक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है। पीटीए आपकी शनाख्त के तहफ्फुज़ और सार्फिन को महफूज टेलीकॉम सर्विसेज की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।

Right, जी, वेलकम बैक सुन रहे FM 100 और जनाब मैसेजेस बहुत सारे आ गए हैं और नादिया मलिक आपके लिए काफी सारे मैसेज आ गए हैं। संजीदा की तरफ से सलाम पहुंच गया है। इसके अलावा मिसेज फारूक कह रही है नादिया मलिक एंड अस्मा को सलाम और दुआएं। अस्मा जी उनकी जानिब से वालेकुम सलाम और नादिया की जानिब से भी वालेकुम सलाम। अस्मा जी थोड़ी देर पहले उन्होंने मैसेज किया, कह रही है कि मैं 9 बजे से गुजरात चैनल लगा के बैठी हूँ। हाय हाय, गुजराती आई कि नहीं आई? आप सोच रही हूँ कि आयाज ही नहीं आ रहा है, दोबारा चेक किया तो पता चला। बस ऐसा ही है सीन, ऐसा ही है सीन। चाहिए नादिया सुन रही है, नादिया यूके में अकेले घूम रही होती है, इधर से उधर तक जो है ना वीडियोज बनी हुई होती है इनकी, इनको देख देख के हम खुश हो रहे होते हैं। तो लेकिन एक मैसेज भी है वो इस गाने के थ्रू है कि भाई जरा देखभाल के सुकून से जाया करो और खासतौर पर ये गाना नादिया मलिक आपके लिए।

है, क्या बात है जाना, ये बहुत पुराना गाना है 50s का, लेकिन आज भी हालात वही हैं, जमाना आज भी नाजुक है। 100 साल गुजर जाए इसके बाद भी ये गाना फिट बैठेगा, जमाना नाजुक है, पता नहीं कब ये नाजुकपन खत्म होगा। बिलावल कह रहे हैं सर वेस्ट इंडीज ने 340, बिल्कुल मैंने देख लिया है सारे सूरत हाल, और नॉरन भी बने थे उस वक्त, कोई खिलाड़ी आउट नहीं था पाकिस्तान का, लेकिन एकदम से एक रेला आता है और फौरन 6-7 खिलाड़ी 2 मिनट में आउट हो जाते हैं, क्या है ये पाकिस्तानी टीम के साथ। अच्छा भाई गयासुद्दीन बलबन को गाना पसंद आ गया, जमाना नाजुक है, वाह वाह वाह, बड़ी नाजुक सूरत हाल बिल्कुल। यार ये मुझे आमिर लियाकत की याद आती है इस जुमले से, क्या बंदा था ये। अच्छा जी एजाज मक्सी भी आ गए, अयाज भाई आपको और बिलावल जरी नूर और तमाम लिसनर्स को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जनाब हमें सुन रही हैं सुंदर जी, सुंदर जी क्या हाल है आपके, ठीक है खैरियत से। सुंदर जी के लिए भी बड़े अच्छे अच्छे ट्रैक्स हैं, थोड़ी देर में मैं उनको भी डेडिकेट करता हूँ। और फायजा अली कुछ कहनी है, पता नहीं कोई गाना लिखने की कोशिश की, मेरी समझ में नहीं आया। अच्छा जी इतना ओल्ड, हाँ जी ओल्ड गाना क्लासिक गाना तो इसी को कहते हैं भाई, ब्लैक एंड व्हाइट दौर का। और कौसर जी उस जमाने में होती थी यार, कौसर जी ने भी उस दौर में 50s में बड़े गाने गाए, और हमारे सतार भी कौसर को जानते हैं मेरे ख्याल से, उस दौर के ये भी काफी थे, अब्दुल सतार हमारा बहुत प्यारा इंजीनियर। अच्छा संजीदा कह रही है कि गाने की बड़ी फुल टाइम तारीफ हो रही है, संजीदा जी गाने हैं जाहिर सी बात है, पुराने वक्तों के तजर्बे हैं गाने हैं, कोई मजाक थोड़ी। अच्छा जनाब अब शामिल करेंगे जरा ये वाला ट्रैक, और वो है कैसे

0: FM 100's time check. It's 10 PM.
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
2: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
3: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
4: FM 24/7 365 FM 24/7 365 FM 100
0: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
4: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान
5: एक्टिव यमी जबरदस्त
6: जनाब वेलकम बैक। सुन रहे हैं FM 100 और फाजा बल्लो नहीं फाजा अली कहनी है बलोची गाना लगाओ यार। हम नहीं लगाएंगा बलोची गाना आज, उर्दू पंजाबी फिल्मी गाना लगाएंगे। बिलावल कह रहे अस्मा जी को सलाम, खुश रहें, मुस्कुराती रहें, ठीक हो गया भैया। अच्छा जी, और सुंदर कहनी बहुत बोलते बेटा, मैं इशारों की जबान से प्रोग्राम करूंगा क्या? FM में बोलते हैं, बोलने के पैसे होते हैं। इशारे में करता रहूंगा, किसी को पहुंचेंगे नहीं यहां से। वैसे भी इशारे में करता भी नहीं, बचपन में भी नहीं किया। नादिया मलिक बस गाने इसी तरह के मैं तुम्हें डेडिकेट कर सकता हूं। आगे पता नहीं क्या इतनी लंबी तकरीर की है, मैंने याद ही नहीं आया। ये जब आपकी आवाज ठीक हो जाना आपने खुद बताना कि क्यों आई हैं आप यूं और अकेले क्यों घूम रही हैं। अच्छा जनाब, दिलदार सद के गयासुद्दीन बलबन को पसंद आ गया। वाह वाह वाह वा, क्या कहने। और अस्मा जी को भी पसंद आ गया। अस्मा जी बड़ी मेहरबानी, खुद आरजे हैं, जबरदस्त गाने, इनकी भी सिलेक्शन कलेक्शन सारी बेहतरीन होती है। और मिसेस फारूक प्यारी सी तारीफ करी कह रही जिम्मी अत्री ने भी ये गाना गाया था। बिल्कुल जमाना नाजुक है। और प्लेलिस्ट को पसंद करने का बहुत शुक्रिया मिसेस फारूक, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, अब कौन सा ट्रैक? नैयरा नूर को शामिल करते हैं और सुंदर जी भी सुन रही है भाई। सुंदर जी को ये गाना डेडिकेट कर देते हैं और वो है कैसे। अच्छा जनाब, मैसेज करेंगे KHR स्पेस, टेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे 3636।

0: It's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: Right, Jana, welcome back to FM 100. Aur saath saath messages kar rahe hain 3636 par. Fazali keh rahi hai ab sindhi gaan laga. Fazal ji, koi technical masla aapke saath ya kya hai? Main aapko farsi mein to nahi kehta, salees urdu mein ki sirf aur sirf filmi gaane lagenge. Na farsi mein, na sindhi mein, na pashto mein, na balochi mein. Urdu aur punjabi ye do gaane hain ye isme laga dete hain. Aur purane gaane classic. अच्छा जनाब, और कह रही आई लाइक दिस सॉन्ग. भाई पुराने गानों की वजह से तो आपको पुराना दौर याद आता है. हाय बसेस भी याद आ गई. कराची स्कूल ऑफ आर्ट बस में आती थी या गाड़ी में आती थी ये बताओ मुझे. आज तक पूछा ही नहीं मैंने तुमसे. ना दिया बस का अपना दौर था. हाँ बेहतरीन. हेलो मास्टर ऑफ जुगलबंदी साहबजादा. भाई कौन सी मैंने जुगलबंदी की? हराम है, मेरे तो गले से आवाज नहीं निकल रही. कोशिश भी करता रहता हूँ. जुगल जुगल के बाद बंदी में ऐसी पाबंदी हो जाती है, आवाज ही नहीं कर रही. अच्छा जी, क्या कहने नैयरा नूर के इतना भी. अरे यार वैसे एक बात है, नैयरा नूर के गाने कमाल है. अच्छा पुराने वक्त के गाने या तो इतने रोमांटिक होते थे बंदे को पता ही नहीं होता, या इतनी दुखी. ओए होए इतना दुख के आदमी गए, भाई क्या हो गया, मैयत पे पहुंच गया हूं मैं, क्या है कोई. खाना निकलवा लो, कड़वी रोटी. अच्छा मैंने देखा कड़वी रोटी कहते थे लेकिन सबसे ज्यादा वही खा रहे होते हैं, टेस्ट भी उसी में आ रहा. भाई बोटी नहीं आई बोटी. फिर ऐसे भी मैंने देखे आप जनाजे पे गए हुए हैं रोटी खाने, बोटी का जिक्र खास था. अबे अब्बा निकले उसके, उससे क्यों पूछ रहा है यार, बोटी नहीं लाए तुम. कितना अजीब लगता होगा जी इस तरह के. मतलब ये होती है बेसिक चीजें जो बचपन से ना बच्चों में डालनी चाहिए. बेटा कहीं जब जाते हैं खास तौर पे ऐसी तकरीबात में या ऐसे मौके पे तो इस तरह की बात नहीं करनी होती, लेकिन हराम है हमारे किसी बड़े बुजुर्ग ने इनको सिखाया. मैं तो पहुंच के जा रहा हूं. भाई रान वाली लाओ, रान वाली बोटी लाओ. ये कौन सी लिया तुम सीने की? अच्छा हम जैसे हम तो खाई नहीं जाती. मैं तो रोटी वाली जगह पे पहुंच जाऊं, मेरे तो कसम से निवाला नहीं उतर रहा था. भाई यार यार छोड़ यार, बाहर निकलो, अजीब सी मनुष्य चल रही है. रोटी निकलने में भी मसला हो रहा था. नहीं भाई बाहर जाके खा लेंगे यार, इस घर में नहीं खाओ यार. लेकिन वहाँ ऐसे ढीठ मैंने लोग देखे, बोटियों पे लड़ रहे. भाई शुक्र है स्वीट डिश का नहीं कह रहे. भाई इतना खाया खिला, स्वीट डिश नहीं रखी इन्होंने. भाई मैयत पे कौन रखेगा स्वीट डिश. लेकिन ये है कि मैंने एक वो भी तकरीब देखी इस तरह. बकायदा वो कैटरिंग वाले को बुलाया हुआ है और मैयत पे पूरा बंदोबस्त है. वेटर भी है, खाने खिला रहे हैं. जिस तरह शादी में नहीं होता आपका माहौल जैसा होता है, वो भी इस तरह का भी मैंने माहौल देखा है. वैसे मातहत के साथ अल्लाह माफ करे, पत्नी क्या क्या मैं देख रहा हूँ और अभी क्या कुछ देखना है मैंने. और कैटरिंग वाले को बुलाया हुआ फुल टाइम, हर चीज बोतलें ये वो. जहां तो मैंने तो खैर नहीं खाया लेकिन मैं देख के हैरान हो गया. मेरा ख्याल से मीठा भी था. शुक्र है अब्बा निकले इस खुशी में. क्या होगा या पता नहीं वाला, मैं क्या कह सकता हूँ. या इतना पैसा तो हमने कहा नहीं भाई, खर्च तो करना हमने. संजीदा पूछे कड़वी रोटी, ऐसे हैरान होकर पूछे बचपन से सुनते आए कड़वी रोटी, सुनी नहीं तुमने? फौरन मम्मी डैडी बन गई. कड़वी रोटी क्या होती है? मिसेस दारू कह रही बिल्कुल सही और आज भी नहीं देखे. हालांकि ये मौका हंसने का बिल्कुल नहीं है, संजीदा बात थी वैसे ये, लेकिन आप चली गई हंसी में चली गई ये बात. लेकिन आप नोट करना ये ऐसे पता नहीं क्या हो गया, तरबियत का मसला है. एक ये और दूसरी मैंने एक बात नोट की, किसी के घर में किसी को दे दो ना बना दे दो, भाई कितने दिन के लिए? हफ्ते के लिए. अब हफ्ते के लिए आप किसी के मेहमान हैं तो आप उनके हिसाब से चलेंगे ना भाई, उनके घर में आप आए. लेकिन वो अपने हिसाब से चल रहा, हफ्ते की जगह दो हफ्ते तीन हफ्ते भी हो सकते हैं. एसी लगा के बैठा हुआ बंदा जिसके घर में, वो खुद अपने लिए एसी नहीं चला रहा, उसको देख देख के कोड़ रहा. अब इसको कैसे मना करें? भाई मकबूल मियां खाने में क्या आज बनाओगे? दाल बनाएंगे. अबे दाल रोज खिला रहा हूँ मैं, मुर्गी हूँ जो मुझे दौड़ता. आज को चिकन विकन मंगाओ, वो फरमाइशें भी फुल चल रही हैं उसकी. तो भैया जब किसी घर में जाते हैं तो उनके हिसाब से चलते हैं, उसके हिसाब से. मैं मेरा काम है थोड़ा थोड़ा इस तरह बता देना, बाकी आप लोगों की मर्जी. ये वो चीजें हैं जो बचपन में बच्चों को सिखानी चाहिए, बेटा किसी घर पे जाते हैं इस तरह नहीं. अच्छा जनाब, एक और खूबसूरत ट्रैक मैं आपको सुनाने वाला हूँ।

0: Friday, it's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: क्या कम उम्र बच्चियों से मुशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र उनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की? उन पर काम का बोझ ना डाले, उनसे उनका बचपन ना छीने। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। बच्चों से मुशक्कत लेना एक काबिले सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मुशक्कत से इनकार करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
3: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 100 like us on facebook.com/FM247365 FM247365
5: Active, yummy, adorable, zabardast. प्यास तो सुनो यार, प्यास तो सुनो यार।
6: और जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस भी कर रहे हैं। नादिया मलिक यूके से मुस्तकिल हमें जो है ना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और अपने सारे किस्से सुना दिए हैं। कह रही है भाई स्कूल ऑफ आर्ट्स तो जरा गाड़ी में आती थी मैं, क्या बात है जनाब। और इसके अलावा प्लीज ऑन, हाँ यार बड़ी मशहूर कंपनी थी, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट था, बड़े अच्छे लोगों की थी मेरे ख्याल से, तो वहां जब थी तो तब वो बस में किसी एक ओकेजन पे। आबिद भाई को बिल्कुल मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से, आबिद भाई हमारे बड़े प्यारे जो थे वो स्टूडेंट भी थे और इसके अलावा वो उस पर काम भी करते थे, गाड़ी है ना इन ड्राइव वगैरह।

मैसेजेस पहुंच रहे हैं 3636 पर। फायजा जी नाराज हो, नाराज ना हो तो आपको ये गाना फायजा जी आपके लिए। अच्छा जी, और बिलावल कह रहे हैं एजाज मक्सी और अच्छा रमजान पठान को सलाम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। और बिलावल कह रहे सर मुझे तो किसी के घर में जाकर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं। बेटा तमीज से रहो ना तो फिर अच्छा लगेगा, लोग भी आपकी इज्जत करेंगे, ऐसी बात नहीं है। कभी हम इस्लामाबाद चले जाते हैं तो वहाँ बंदा मुल्तान चले जाते हैं तो वहाँ भी किसी के यहाँ चले जाते हैं, बयास के यहाँ जाके रह लेते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन इंसानियत मतलब इंसानों की तरह रहो, ये नहीं हो कि बिल्कुल ही तकलीफ। अच्छा हम हमारा ये चक्कर, जैसे मैं जाता हूँ ना, मैं सबसे पहले तो जरा किचन की सारे सामान में ला के रख देता हूँ अपनी पसंद की सारी चीजें, उनको बोलने की जरूरत ना हो। सुबह को मेरे जो जो चीजें पसंद होती है मैं मार्केट जाके सारी चीजें वो जरा ज्यादा क्वांटिटी में उठा के, अंडे शंडे ये वो जो है आप चीजें सब उठा के, किसी के ऊपर आप बोझ ना बने। हालांकि इसमें लोग नाराज हो रहे हैं, याद भाग ये क्या कर दिया आपने, अबे नहीं यार अच्छा नहीं लगता यार, दूध डबल रोटियां सारी मैं उठा के ले आता हूं, खाने पीने की भी चीजें ऐसी, तो ये अच्छा लगता है। आप जरा उनको ये फील कराएं कि भाई हम आए हैं मेहमान बन के, जहमत बन के नहीं आए। तो छोटी चीजें होती हैं लेकिन ये बताने से, बचपन में हमारे अम्मा अब्बा ने बताया इस चीज का जरा ख्याल रखा, किसी के घर में जाते यार कोई गिफ्ट लेके चले जाए तो खाने की जरूरी है कि बड़ी महंगी महंगी चीजें ले जाओ, केक शेक लेके चले गए, बिस्किट लेके चले गए, कुछ भी डोनट्स वगैरह, बंदा अच्छा लगता है जरा। और वैसे भी चले जाओ तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसी तमीज की बात है। तो फिर इस तरह के मेहमान को वो वेलकम भी बड़े दिल से, चलो भैया आया तो जरा रौनक मेला रहे, अब जाके बिल्कुल ही कंगलों की तरह वहां बैठ जाए, हाँ भाई क्या पकाया, बुरा लगता ना। बाकी आप मर्जी आपकी वैसे। अच्छा जी सॉन्ग अच्छे हैं, अशो भी अच्छा है, जरी नूर बड़ी मेहरबानी आपने पसंद किया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी अयाज ब्रो खरीदार फिल्म का सॉन्ग चला दें, वसीम फ्रॉम फरी बेरे, वसीम भाई रिक्वेस्ट क्यों नहीं है ना, वरना मैं जरूर चला देता। इसमें क्यू शीट बनी हुई है ना, उनको फॉलो करना है, वसीम भाई मेरे प्यारा सा वसीम भाई गुड्डा। ये गजल मुझे याद आ गई, ये थोड़ी सी मैं आपको सुनाता हूँ, मुन्नी बेगम याद आ गई भैया, वाह वाह वाह वाह, इस साउंड इफेक्ट के बाद ये गजल।

0: दो घड़ी का सहारा, सहारा नहीं, क्या खूबसूरत बात की। वाह वाह वाह, गजल बहुत तवील है, शाम हो जाएगी, अभी तो रात हुई है, तो सुबह हो जाएगी, लेकिन गजल कहीं खत्म नहीं होना, इसीलिए इसको बैकग्राउंड में रख लेते हैं और आप सबके मैसेजेस शामिल कर लेते हैं। आपकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, घर वाले खुश हो जाते हैं सुनकर। बेटा तुमने तो वो वाला इफेक्ट दिया, बेटा ससुराल जाके दिखाओ, होते ना बता, ये इस तरह भी लोग खुश होते हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जान, SMS हाजिर आपको।
1: सबसे पहले
0: अच्छा जी, सुनकर हमेशा हैप्पी और
1: हमारी
0: आप फिर हंसी, उसके बाद महाजूसुफ़ज़ई खुश रहे, खुश रहे आप, मेरी दुआएं आपके साथ। फैज़ अली करी, आज पहली बार आपको एक सॉन्ग का बोला आपने नहीं लगाया, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ फैज़ा जी, मैं क्या करूँ।

0: वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है बिलावल के सर, आज तो आप बहुत जज्बाती हो रहे हैं बेटा। जज्बात के अलावा हमारी दुनिया में है क्या? सिर्फ यही रखा हुआ है हमारे पास, बाकी बिल्कुल फारिग तबीयत से, उसमें भी तुम कंट्रोल लगा रहे हो। जज्बात होने चाहिए ताकि अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सके। अच्छा जनाब, और बिल्कुल सही याद दिलाया यार, वो येलो कैप, हाँ उस दौर में येलो कैप होती थी, इन ड्राइव तो अब आ गए, मेरा मतलब वही था नादिया जी, बिल्कुल सही कहा, येलो कैप, और इतनी थकी हुई वो गाड़ियां होती थी येलो वाली, बंदा लगता पता नहीं पेट खराब हो गया इसका, क्या हो गया, इतना गाड़ी का कलर अजीबो गरीब गंदा, बंदे का दिल ही नहीं कर रहा उसमें बैठने का।
1: बदले गए वक्त की,
0: सुंदर जी कह रही है दिल नहीं लगता, क्यों नहीं लग रहा दिल, दिल को चेकिंग कराओ, ईसीजी कराओ, कहाँ चला गया दिल। अच्छा जनाब, गजल तो ये हो गई, अब जरा एक और खूबसूरत सा ट्रैक मैं आपको सुनाता हूँ, जब गजल की बात हो रही है, एक और गजल मैं आपको सुनाता हूँ। हाय हाय मैडम जी, फिर मैडम जी हैं।

0: नहीं तो छेड़छाड़ करूंगा, हवादार करूंगा।
1: भाई जनाब बिलावल भाई इतना काफी है मेरे ख्याल से। फैजा अली कह रही है आज फाजा क्या खा लिया, बाकी नादिया कह रही है फाजा अली ने कुछ खा लिया है, लगता टिका के खाया। फाजा जी खुश रहे आप, खुश रहे। और कभी शो मिस हो जाए टाइम ना मिलने पर तो कमी लगती है, और काफी सलामत रहें जाने जा महा यूसुफ जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। हाय हाय। अच्छा जनाब अब जरा नेक्स्ट ट्रैक की जाने फिर बढ़ते हैं।
0: छोड़िए
1: और शामिल करते हैं यार ये जफर इकबाल जफरी को, मैं जरूर अपने क्यू शीट में शामिल रख लेता हूँ। और पंजाबी ट्रैक एंजॉय करो, सुनो। आए भाई माना मैसेज करो 363।

ऑल राइट जनाब, वेलकम बैक टू एफएम 100। और साथ ही साथ जनाब भुप्पा जी भी हमें मैसेज कर देते हैं, असगर साहब भी मुझे कॉल कर लेते हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। अब बिलावल थैंक्स कह रहे हैं, थैंक्स कहने की कोई जरूरत ही मेरे दोस्त। अच्छा, अभी 70 पे एक खिलाड़ी आउट हो गया पाकिस्तान का, 344। बिलावल लगता है कि पाकिस्तान लीड ले सकेगा या फिर पहले की तरह 150 रन पीछे?

अच्छा जनाब, और भी मैसेजेस पहुंच गए हैं। निगत हमें मैसेज किया, निगत जी कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत है? इतनी दुआएं आपने दे दी हैं और इतना प्यार आपने अपने मैसेज में भेज दिया है, और कह रही है आपकी बातों से मन मोह जाता है। पता नहीं मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा, मन मोह जाता है। अच्छा कहना चाह रही है, मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल करके। चलें, बहुत मेहरबानी, तारीफ की है तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके अलावा इरफान भाई कह रहे हैं कि अयाज भाई आजकल फेसबुक पे नहीं आता। हाँ यार, थोड़ा फेसबुक पे क्या करना है, वही सारी कॉन्सेंट्रेशन मेरी ना इधर ही रहती बातों में। लेकिन हाँ, कह रहे हो किस दिन आ जाऊंगा अचानक, शेव वेव करके ना, जरा पप्पू बच्चा बन के, अच्छे बच्चे बन के। सलीम मेमन कह रहे हैं सलाम अयाज भाई जान, लिसनर्स का जी कह रहे हैं मेरे नाम क्या है, जी लगा सकते हैं सर जी? जी क्यों भाई, प्रोफेसर हो क्या है, जी क्यों लगाए आप? जेड भी लगा लें, कुछ भी लगा लें भाई, तुम जो नाम जो तुम्हारा है सलीम मेमन वही लगाएंगे ना, है कि नहीं? किस किस्म के मैसेज आ रहे थे, क्या क्या मुझे पढ़ना पड़ता है दोस्तों, देख लो आप, देख लो। अच्छा जनाब, एक और ट्रैक

0: राइट सर, नाउ वेलकम बैक, सुन रहे हैं फ्रॉम 100 और मिसेस फारू परेशान हो रही है, कहनी शो का टाइम कितना शॉर्ट है क्या? हाँ यार, वैसे ये है कि एफएम 100 में जब भी आता हूँ टाइम इतना स्पीड से गुजरता है। भाई आप सबको सलाम और उमेर खान, अच्छा नहीं सॉन्ग जबरदस्त, उमेर बाप को कोई SMS नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से गई नहीं शायद, वो जहां भी गई हो अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रहे वो। अच्छा बिलावल कह रहे हैं सर लीड तो मिल सकती है, बैटर्स को जिम्मेदारी से बैटिंग करनी हो, यही तो मसला है बिलावल भाई, यही तो मसला है। देखिए इमाम भाई आउट हो गया, वो नया लड़का अच्छा खेल रहा है, फिर भी उवैस नाम है क्या है, वो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से असद शफीक आए हैं या कौन अब दूसरे कौन से, फिर अब चेक करके बताओ कौन आया भाई। अरे शहजादा आ गया भाई, वाह वाह वाह वाह, नदीम अख्तर साहब तशरीफ ला चुके हैं, थोड़ी देर में जबरदस्त शो करने वाले, क्या कहने। अच्छा जनाब छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद और मैसेज करेंगे 3636 पर।
1: पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कोर्ट उसका नौजवान तलवार है। पाकिस्तान की 61% आबादी 18 से 35 साल की उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है, जो एक मुनफरिद आबादियाती सरमाया है। नौजवान हमारी मईशत की धड़कन और हमारे मुस्तकबिल के निमान है। अहम उनके खिलाफ एक खामोश जंग जारी है और वो है मुनशियात का बेदरेज। मुनशियात फरोश माफिया अच्छी तरह से जानती है कि कहां वार है। हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां उनका हदफ है, जहां वो नौजवान जहनों को खतरनाक नशा आवर अशिया से गुमराह कर रहे हैं। यही वो मकाम है जहां इंसदाद मुनशियात फोर्स के एन वाजे मकसद और मजबूत इरादे के साथ मैदान में

0: एक मिशन पर मुनशियात को न कहीं जिंदगी को हाकें। आइए इस खतरे के खिलाफ मुतहिद हों। नशे से पाक नौजवान एक मजबूत मालियाती पाकिस्तान है। AMF का साथ दें, मुस्तकबिल बचाएं, कौम को मजबूत करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और गुड सॉन्ग। मजाक वैसे हम बेवफा नहीं हैं, मगर चले जनाब जो भी हैं खुश रहे। महाज यूसुफ जई थोड़ी टाइम स्पीड से जा रहा है, लेकिन एक बड़ी खूबसूरत लाइन गयासुद्दीन बलबन ने जो है वो भेज दी है मुझे। कह रहे हैं कि इंसान चांद पर तो पहुंच गया है, मगर इंसानियत से गिर गया है। भाई वाह, क्या लाइन लिखी है, भाई क्या लाइन लिखी है।

ये गाने सुने साथ में रुमाल भी हाथ में रखा, तो किसी टाइम पे भी आंसू गिर सकता। बहुत दुखी गाने बनाते थे कसम से, इतने दुखी गाने। क्या हुआ दिल पे सितम, फेसबुक नहीं थी ना, और वो भी नहीं था क्या नाम है इंस्टा, कि भाई बंदे का पता चलता रहे कि भाई क्या हो रहा है, क्या कहाँ घूम रही है या कहाँ घूम रहा है। बस रब्ता टूटा तो खत्म, फिर इस तरह की कैफियत होती थी। ये इस वक्त ये बावला ओपन हो गया, मेरा मतलब अजीब सा हो जाती तभी। अच्छा जनाब, अब टाइम क्योंकि थोड़ा थोड़ा रह गया है तो मैं जल्दी जल्दी गाने जो है वो सुनाना चाह रहा हूँ। अरे क्या रोमांटिक गाना यार ये भी, थोड़ा सा सुना रहा हूँ। मैं नाथ जी की आवाज आए, मैं नाथ जी का तो मैं फैन हूँ।

हाय हाय हाय, क्या गाना है यार, जबरदस्त। रात के इस टाइम में सुकून के साथ आप एप्पल जूस पीते हुए ये गाना सुने आप, जूस एप्पल हो। अच्छा जनाब, और आजमा जी हंसते रहे, हंसते नहीं मुस्कुराते रहे, मुझे अच्छा लगता है। और गयासुद्दीन बलबन कह रहे हैं मैं भी फैन हूँ, क्योंकि मिस्ट्रेस का नाम जो है ना वो भी मैनाज है। बेटा तुम्हारी तो मजबूरी हुई ना, फिर फैन तो ना हुआ तुम, मजबूर हुआ तुम। हाय जनाब, एक और मुझे गाना नजर आया आज, पहली दफा मैंने वैसे ये गाना सुना, बड़ा कदीमी गाना लेकिन पहली दफा मैंने सुना। माला जी और अहमद रुश्दी, फूफा चेक करो।

हाय वाह वाह वाह, पहली दफा गाना सुना लेकिन इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग, वाह वाह वाह, रुजदी साहब की आवाज कमाल रोमांटिक गाने में लग रही है। ओए होए, मैनाज का एक दफा फिर गाना, रियाज भाई।

ना जनाब, टाइम क्यों भी थोड़ा है। वैसे एक बात है, बगैर सिंगार के इसने देख लेना, फिर ये कहेगा कि बस सिंगार ही करके आना, विदाउट सिंगार आना ही नहीं। हाय हाय, वक्त वक्त की बात होती है दोस्तों। अच्छा जनाब, ये गाना भी रह गया यार, जबरदस्त था ये वाला भी।

0: वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको और भरपूर तरीके से जाहिर है भाई हमारा शहजादा अयाज शो कर रहा था तो आप लोग सब लोग वार्म अप तो पहले से ही हुए लेकिन फिर भी हमने भी कर दिया आपको वार्म अप और मैसेजेस की रफ्तार ये बता रही है कि आप लोग सब हशाशो बशाश शो सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप लाला संजीदा आपी मुश्क मानूर और तमाम सुनने वालों को सलाम कहा हमारी प्यारी सी बहनान सबागुल यूसुफ हाय बाबू से आ गए और कह रहे हैं तमाम सुनने वालों को सलाम एफएम 100 की तमाम फैमिली को सलाम खुसूसी तौर पर हमारी प्यारी सी आंटी चाची अरूसा गुलबानो तमाम डॉक्टर्स इमरान भाई खिताब गुल्लाला गुफरान भाई और आपके वालिद मोहतरम को सलाम वालेकुम अस्सलाम जनाब लाला आ गया है लाला के दर गायब है आप और कह रहे जाने जिगर या हबीबी आप कैसे हो मैं तो ओके टेक हूँ अयास का शो मिस हो गया ओए होए होए जिगर कोई गाल नहीं की हम दोनों मिला जुला कर एक ही शो कर लेंगे मतलब उसका भी अंदाज अपना लेंगे आपको ऐसा लगेगा आप अयास का शो सुन और कहीं कहीं लगेगा कि मेरा सुनना और कहते हैं कि आपको गुल सबा गुल महनूर मुश्क और हिना गुल और तमाम सुनने वालों को प्यार भरा सलाम वालेकुम अस्सलाम और दो दो मैसेज आया लाला क्या हो गया मतलब अयाज के शो का भी मैसेज एक ही तरह का मेरे शो में कर दिया बहुत शुक्रिया अमीन कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई खुश रहे हमेशा शो वीआईवी ऑसम बिंदास बोले तो जरास सबको सलाम का है सबा गुल को सलाम का है डेडिकेट एक गाने की फरमाइश वाह भाई वाह नए नए गाने की फरमाइश करो यार नए नए गाने सईद कह रहे हैं नदीम सर महा यूसुफ जई को सलाम कह दीजिए जनाब हम कह देंगे बिल्कुल ये सईद साहब मेरा ख्याल पहली दफा एंट्री मारी आपने और नदी भाई अगर हो सके तो लाला और मुश्क के नाम अच्छा सा पख्तों का गाना कर दे जनाब सब अगुल कह रही पूरी कोशिश होगी यानी कि समझ रही है ना अस्सलामु अलैकुम जनाब प्लीज आस्क माय लाउडली मिस्टर इरशाद बलोच फ्रॉम लियारी कराची खैर जी अंग्रेजी जरा सर से गुजर गई है इरशाद बलोच साहब अपना नाम जोर से पुकारूं मैं ये कहना चाह रहे हैं हम खैर जी इस तरह तो होता है इस तरह के काम हो गए क्यों उदास पड़ते हो साथियों के इरशाद हो गए संजू आ गए हैं कहीं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू नदीम खुशामदीद कहती हूँ आफियत की अनगिनत दुआएं शादो आबाद रहे कहिए कैसे मिजाज है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ बस थोड़ा सा चक्कर खाने को दिल कर रहा है कल से तो बस क्या है घर में गोल गोल घूमे चक्कर आ जाएंगे खुद ही और मैं इसकी आहटों को जान जाती हूँ उसे पहचान जाती हूँ ओ ये कोई इंतखाब है भाई और उनवान है दस्तक मैं उसकी आहटों को जान जाती हूँ उसे पहचान जाती हूँ मैं अंदर से समाद बनकर सर ता पा हिम्मत तन्ना गोश रहती हूँ हमतन गोश रहती हूँ हिम्मतन गोश समाद बनकर सर ता पा हमतन गोश रहती हूँ के बाहर से वो दस्तक दे मैं पूछूं कौन वो बोले मोहब्बत हूँ इख्तिताम तक साथ है जनाब क्या बात है 11 से 1 बजे अभी से गबल्ले हाँ आज आते ही गबल्ले हो गए अभी आपके मैसेज में भी गबल्ला हो गया हम अपन गोश और पंजाबी सीखने पड़ेगी आसान तो समझ आ जाती है पहला सॉन्ग थोड़ा सा समझ आ रहा है हालांकि बहुत मुश्किल है मुझे समझ में नहीं आ रहा हालांकि मैं पंजाबी समझ जाता हूँ खैर जी अगले गाने भी आपको पसंद आएंगे बहुत ही प्यारी मेरी प्यारी सी जरीन नूर काबिले एहतराम नौरीन बहना बहुत बहुत सा प्यार बाकी जनाब इनके जो इंतखाब हैं वो हम अभी थोड़ी देर में शामिल करेंगे सबा गुल के लिए बहुत सारा प्यार और कहा है जीती रहें मुस्कुराती रहें गयाज मेरा शहजादा एक हफ्ते का बच्चा कह रहा है अस्सलाम वालेकुम आपको और आपकी टीम को और तमाम सुनने वालों को
1: मेरा बच्चा आजकल क्या खा रहा है गयास? 7-8 दिन का बच्चा क्या खा रहा है? रानी मेरी बहन आ गई है और कह रही है सलाम ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम रानी, कैसी हैं आप? यानी कि समझ रही हैं आप? इसी बात पर जाएंगे ब्रेक की जाने।
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
0: वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। मैसेजेस आपके आ रहे हैं 3636 पर, और हम आपको लेकर जाएंगे एक और बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जाने। बाय एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे। अशर वजी वजाहत, सॉरी अशर वजाहत इसके सिंगर का नाम था जो आपने सुना तुम ना हो, और पहला जो तेरे नाल सुना आपने जो पंजाबी का था वो हैदर साहब का था। एंड आई होप कि आपको ये दोनों ट्रैक पसंद आए होंगे, और नए नए ट्रैक चला रहा हूँ, नए सिंगर्स के ट्रैक चला रहा हूँ, आप लोगों को नाम भी याद हो जाए इसलिए बताता रहूंगा कि किसका ट्रैक है। मैसेजेस आपके आ रहे हैं जनाब, उनकी जाने बढ़ते हैं। बारबेक्यू खा रहा था इस उम्र में, बारबेक्यू मतलब चार पांच दिन का बच्चा बारबेक्यू, वाह वाह अपने घर में खुद बना के। अच्छा आप बना भी खुद रहे हैं, वाह वाह वाह। तो आपको तो तीन तीन, कौन से घर में बना रहे हैं आप? आपके तो माशाल्लाह से तीन तीन घर हैं, या एक ही घर में तमाम जौजात हैं? अच्छा जी, सेपरेट सिस्टम बना रखा है घर में, बड़ी अच्छी बात है जनाब। और विलेज और सिटी दोनों लाइफ स्टाइल फ्लेवर, क्या बात है गयाज भाई। यहाँ पर तो कुछ सिलसिलेगार ऐसा चलता है। अभी गयाज जो है मुल्तान में अपने घर में, जाहिर है कि बड़ा सा घर है भाई, क्या बात है भाई। तो उसमें उन्होंने सिस्टम कुछ ऐसा रखा है, सेपरेट सिस्टम उन्होंने बनाकर रखा हुआ है जहां पर बारबेक्यू करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन गयाज भाई यहां पर तो बारबेक्यू के लिए दोस्तों से ना मशवरे लेने पड़ते हैं। या तेरी छत सेट है ना, बल्ब है वहां पर, वहां पर हो जाएगा बारबेक्यू। हर कोई पूछ रहा होता है एक दूसरे दोस्त से जब बारबेक्यू का प्रोग्राम बन रहा होता, तो फिर कोई ना कोई एक ऐसा निकल आता है, यार मैं अपने घर की छत पे करवा लूंगा, चलो ठीक है बस सही है भाई, आ जाओ सब आ जाओ वहीं पर। फिर ये भी देखा जाता है कि किसका घर करीब है पहले उनका, तो ये बड़ा मजेदार किस्म का होता है दोस्तों के साथ जब इस तरह के प्रोग्राम बन रहे हों। तो खैर जी, आप बारबेक्यू खाएं। ओए होए मुश्किल आ गई है भाई, क्या नहीं, अस्सलाम वालेकुम हैंडसम, क्या हाल है, शो एंजॉय कर रही हैं, जबरदस्त। सबागुल चाचू के लिए बेस्ट विशेस। कितने सताए हैं हुए हैं हैंडसम जब तुम ना हो, कितने सताए हैं हुए हैं हैंडसम जब तुम ना हो। एक दोस्त ने पूछा मैं कौन हूं, तो उसका जवाब वाजे नहीं मिला, क्या गला दबा दूं? जाहिर है अगर फोन पर बात हो रही है तो फोन को दबा दें। मैंने उसे सफेद रंग पहने देखा और फिर सफेद रंग मेरा पसंदीदा बन गया, क्या बात है मुश्क। वैसे आपका कौन सा फेवरेट कलर है मुश्क, आप ये मुझे जरूर बताइए पसंद का। अच्छा आपको एक और बात बताऊं कि जो इंसान को रंग पसंद होते हैं उससे आप मिजाज का अंदाजा लगा सकते हैं उस इंसान के, हकीकत बता रहा हूं ये मैं आपको, गलत नहीं बता रही है। अगर कोई बता सके तो बताए, क्योंकि काला रंग बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, तो काला रंग जो है ये सवाल ही ना कर दें हम, किस चीज की अलामत समझा जाता है? वैसे अलामत बोलूंगा तो वही सोग वोग आप लोग ले आएंगे, इसको घुमा फिरा के किस तरह कहा जाए, इस तरह कहा जाए कि चले काला रंग जो पहना जाता है ज्यादा, जो पसंद करते हैं ब्लैक कलर वेयर करना, उन लोगों का मिजाज कैसा होता है अंदाजन बता दें हमें। और सफेद रंग जो पसंद करते हैं उनका अंदाजन मिजाज आपकी नजर में कैसा होगा, सोचिएगा बताइएगा। आपके गिर्दो निवाह में जो लोग हैं, चाहे वो रिश्तेदार हों, जानने वाले हों, पड़ोसी हों, जो सफेद रंग पहनते हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि उस बंदे का मिजाज कैसा है, फिर इस तरह कंपेयर करें। मैं अपनी सोच बता रहा हूं, मैं इस तरह भी करता हूं जो चीज मुझे समझ में नहीं आ रही होती। और इसी तरह ब्लैक कलर जो पसंद करते हैं आप, देखिए कौन कौन है, बहुत सारे मिलेंगे, तो उनका मिजाज कैसा है, फिर कलर को साइड पर करके उनके मिजाज की जानिब जाएं। ओहो अच्छा ये बात है, क्या बात है भाई क्या बात है। तो अस्सलाम वालेकुम जनाब प्लीज। अच्छा ये तो हो गया था, आस्क मी लाउडली प्लीज प्ले नफरत कर दाई, एम ही प्ले कर दें, न नाम न पता न जान न पहचान न सलाम न दुआ, मैं प्ले कर दूं भाई, यहां पर इसलिए बैठा हुआ हूं। अच्छा जी अमीन साहब कह रहे हैं कि अर्ज किया है, रस्म उल्फत ही इजाजत नहीं देती वरना वगरना। हाय हाय हाय, उर्दू भी सही पढ़नी चाहिए ना।

0: हम भी तुम्हें भुलाएं ऐसा कि सदा याद रखो। बड़ी मुश्किल से हिज्जे किए मीन भाई, तुम्हें के स्पेलिंग और बुलाएं, वाह वाह। तो अर्ज किया है रस्म उल्फत ही इजाजत नहीं देती, वगर ना हम भी तुम्हें भुलाएं ऐसा कि सदा याद रखो। और सलाम कह रहे हैं चुड़ैल बहना, चार्ली भाई से नाराज हो आप हैं? बताओ पगली। बता दो, मुश्क आज हो जाए कुछ। और हमारी प्यारी सी शहजादी बहना जरीन नूर आ गई हैं और कह रही हैं सलाम कैसे हैं वाले साहब संजू को और तमाम सुनने वालों को। उन्होंने सलाम गाया है। जरीन नूर तुम्हारा पहला मैसेज पढ़ लिया, अब तुम्हारे मैसेज गिनूंगा मैं ताकि तुम्हें यकीन हो कि मैंने सब पढ़े हैं। लाला कह रहे हबीबी सबागुल मुश्क और हिना को एक अच्छा सा खूबसूरत सा सॉन्ग नाम लेकर निगहत और माहीन इनको डेडिकेट कर दूं और निगहत और माहीन खुश हो जाएंगी। ये आपको कैसे पता वो खुश हो जाएंगी? और आजकल आप जीबीएन का नाम बहुत कम ले रहे हैं, क्या बात है जरा बताएं। खैर हम गाना डेडिकेट करते हैं और नाम लेकर करेंगे, डोंट वरी। और मैसेजेस तो आपके माशाल्लाह से। एम अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं सलाम एने भाई, क्या हाल है? मैं ओके टेकूं। और कह रहे हैं महानूर गांव गई हैं, मेरी तरफ से एक सॉन्ग महानूर के नाम डेडिकेट कर दीजिएगा 12 बजे से पहले। ये क्यों 12 बजे के बाद क्या होता है पहले? और कहते हैं रात पाटे अली की, अच्छा राहत फतेह अली का सॉन्ग है ये। फरमाइशी प्रोग्राम तो नहीं होगा भाई, डेडिकेट कर दूंगा ये वादा रहा, गाना अपनी मर्जी से चलाऊंगा भाई। और भाई अब और मैसेज नहीं पढ़ रहे, वजह पूछे, वजह ये है कि हमने जाना है एक ब्रेक की जाने, तो जाते हैं एक ब्रेक की जाने।
1: facebook.com/fm247365 fm247365

वेलकम बैक आएंगे सुने हो आप सबको, और अभी आपको लेकर जाएंगे एक और बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जानेब। और कहां गया भाई वो ट्रैक, ये रहा हसन रहीम का ये ट्रैक है और इसका टाइटल है विशेज, और ये बहुत पॉपुलर हुआ था और खुसूसी तौर पर यंगस्टर्स जो हैं हमारे जेंजीज जो हैं वो बहुत पसंद करते हैं। एलो फड़ो

0: वेलकम बैक सुने हो विशेष आपने सुना है ना, होप यू लाइक इट। मुझे पिंक, बेबी पिंक, ब्लैक, सफेद और नेवी ब्लू ये रंग पसंद है, मगर अब सिर्फ सफेद। हाय लजी, क्या बात है। और कह रही ये फोन पर आजकल जो है वो बात नहीं हो रही, उनकी दूध देने वाली बकरी चोरी हो गई है। ये अपनी दोस्त की बात कर रही है मुश्क, इससे पहले जो इन्होंने कहा था। और कह रही है मुझे जिंदगी में रिस्क लेना हरगिज पसंद नहीं, जब भी मेहमान आए साथ बैठकर खा पी लेती हूँ, क्या पता बाद में कुछ बचे या ना। चुड़ैल किसको कहा है हैंडसम? मैंने आपको चुड़ैल बिल्कुल नहीं कहा, वो आपका अमीन साहब जो है, अमीन ही कहता मेरा ख्याल है, चार्ली वो आपके साथ मजाक करता है ना। और सॉन्ग के लिए सबा गुल का थैंक्स। अरे क्या बात है भाई, क्या बात है। नौरीन प्यारी सी बहना मेरी आ गई है और कह रही है अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, आपके मिजाज शरीफ कैसे हैं, सदा हंसते मुस्कुराते रहे आमीन, तमाम हसीन तरीन समातों को भी मेरी तरफ से सलाम और ढेरों दुआएं। संजू बहना को अच्छा सा सॉन्ग डेडिकेट कीजिएगा मेरी तरफ से, और आज मेरी बहुत ही प्यारी सी बेटी सिमल यासिर को बर्थडे विश कीजिएगा और अच्छा सा गाना डेडिकेट कीजिएगा। और जी बिल्कुल करेंगे, जी बिल्कुल करेंगे। मुझे याद है आपने परसों भी कहा था ये बात, और सिमल जो है वो मैंने सही नाम प्रोनाउंस कर रहा हूं ना, ये बताइएगा मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं या नहीं, उसका तलफ्फुज सही है ये गाने क्या नाम है गाने का क्या नाम का, तो बहना आप मुझे बता दीजिएगा। तो सिमल को हम गाना जरूर डेडिकेट करेंगे, बर्थडे भी विश करेंगे 100%। और माहिना मिर्जा आ गई है, माहिना कहाँ थी तुम, कह रही है सलाम वालेकुम FM 100 की तमाम फैमिली को सलाम, कैसे हैं नदीम आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और माहिना कैसी हैं ये भी बताएं, वो माहिना को कलर कौन सा पसंद है माहिना बताएंगी। और
1: ये गयास भाई कहते हैं जी आपने बिल्कुल सही फरमाया है,
0: मुझे मेरी बहन याद आ जाती है
1: फरीदा बोरानो जी,
0: जब भी उनका मैसेज आता है तो मेरे अंदर मेमन जाग जाता है। और आज मैं भी अयाज ब्रदर का शो नहीं सुन सकी, अल्लाह जी कोई गल नहीं,

हाँ कभी कभी मजाक भी कर लेता हूँ, फौरन पकड़ लेते हैं भाई। जोजा की जो जमा है, मैंने जोजात कहा था, अजवाज होता है वैसे उसकी जमा, जोजात नहीं होता, ये मजाहतन कहा था। कभी कभी मैं मजाक भी कर लेता हूँ, अजवाज। अच्छा जी, गलती हो गई, मेरी बहन ने फौरन जो है ना मुझे दुरुस्त कर दिया। रानी ने, रानी के मैसेजेस पढ़ रहा था मैं। संजू कहाँ गायब हो गई है? संजू बस इतने से मैसेज करने थे, कह रही है कि अगर दरख्त वाईफाई के सिग्नल्स देते तो सब सब ने अपने घरों के आगे दरख्त की भरमार कर देनी थी, लेकिन ये जिंदगी देते हैं और हमें इसका शऊर नहीं। आए संजू, एक तो ऐसी बात ले आती है कि वाह वाह क्या बात है, दिल पर लगती है। और सिमल को सालगिरह की बेशुमार मुबारकबाद, अल्लाह पाक जीता रखे, इलाही आमीन। संजू के मैसेजेस पढ़ रहा हूँ ये मैं, लेकिन संजू का ये वाला मैसेज जो है ना, इस पर मैं चर्चा करूंगा, अभी नहीं करूंगा, कुछ देर में करूंगा। आते हैं जनाब इनके इंतखाब की जानिब। कहती हैं कि कुछ लोग इतना खूबसूरत बोलते हैं कि इंसान की समातें उनको सुनने से कभी बेजार नहीं होती, खुश गुफ्तार होना भी एक नेमत है। जब कभी किसी ऐसे इंसान को सुनती हूं तो बहुत शिद्दत से ख्वाहिश करती हूं कि रब्बुल आलमीन इस नेमत से मुझे भी नवाज दे, लफ्ज अदा हो और दिल में उतर जाए, लहजे में वो तासीर दे के अल्फाज समातों से गुजर कर रूह में उतर जाए, इलाही आमीन। अच्छा आपको हम एक खबर देते हैं, ये आपने बात तो बहुत अच्छी लिखी और बेशक ऐसा है कि कुछ इंसान ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं कि जिनकी गुफ्तगू इतनी, यार क्या क्या लिखती रहती हो संजू आप, ग्रेट हो यार। और एक और मैं बात बताऊं आपको इस हवाले से भी, मैं अपनी जात के हवाले से कह रहा हूं कि आपकी आपके जो मैसेजेस होते हैं ना संजू, वो उनमें इतना कुछ होता है कि मुझे बहुत हेल्प आउट करते हैं, हेल्प आउट इन द सेंस के मुझे आपका मैसेज पढ़ के बेशुमार बहुत सारी चीजें वो याद आ जाती हैं जो मैंने पढ़ी हुई हैं, जो मेरे जाती तजर्बे हैं, तज्जिए हैं, और वो फिर मैं लोगों के सामने जब उनका जिक्र करता हूं तो जाहिर फायदा ही होता है। और इससे पहले कि मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूं कि इंसान की गुफ्तगू जो आपने कही कि कानों में रस घोल देती है कुछ लोगों की, इससे पहले मैं आपने अपने बारे में जो लिखा है कि अल्लाह ताला मुझे भी ये चीज अता फरमा दे, तो आप में ये चीज मौजूद है, मैं आपको पहले से बता रहा हूं। जब कॉल आती थी तो आपकी आवाज में अल्लाह ताला ने एक तासीर रखी हुई है कि पहली बार जो भी सुनता है वो उसके एक होता है ना कि फौरन अलर्ट हो जाता है, यार क्या रेडियो वॉइस है यार, क्या जबरदस्त वॉइस है, मैंने आपको ये कॉम्प्लीमेंट दिया भी था और माशाल्लाह से आपने रेडियो किया भी हुआ है, तो ये अल्लाह ताला ने आपको अता किया हुआ। और बाकी जो इस हवाले से बात है वो मैं बात कर दूं आपसे कि इसका एक ताल्लुक है जो आपका मैसेज है कि कुछ लोग इतना खूबसूरत बोलते हैं कि इंसान की समाते हैं उनको सुनने से कभी बेजार नहीं होती, उसकी वजह यह है कि बोलना जो है, अब एक इंसान है उसकी आवाज बहुत अच्छी है और जो उसकी आवाज ही सहर तारी कर देती है सामने वाले पर, एक बारोब किस्म की भी आवाज होती है, मगर जो बोलता है ना जब इंसान, तो वो सामने उसका अंदर सामने आ जाता है, फौरन आ जाता है, सिर्फ आवाज का ही अच्छा होना समातों को सहरंगेज या उसमें रस नहीं घोलता। उसके साथ साथ मैं आपकी बात की नफी नहीं कर रहा हूं, आपको पहले मैं ये बता दूंगी कि जो कुछ आपने लिखा है ये 100% दुरुस्त है। मैं अपने जो बहुत सारे मैंने जो चीजें पढ़ी होती हैं तो उनको जरा मिक्स करके मैं सामने पेश करता हूं ताकि लोगों तक वो बात भी पहुंच जाए, तो उसमें ऐसा होता है कि इंसान क्या बोल रहा है ये भी बड़ा एक कमाल होता है कि उसका अंदाज, उसकी गुफ्तगू।

उसके लफ्जों का चुनाव, उसके टॉपिक का चुनाव, जो भी वो गुफ्तगू कर रहा है, हर इंसान जो है वो टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहा होता है। घर में बैठे होते हैं ना, रिश्तेदारों की जो बुराइयां हो रही होती हैं वो भी एक टॉपिक है। तो इस हवाले से मैं बता रहा हूं, हर बात को साथ साथ क्लियर भी कर रहा हूं। ये तमाम चीजें इसमें शामिल होती हैं। और उसके बाद फिर जब वो गुफ्तगू करता है वो बंदा, तो फिर वाकई समातों को जो है वो एक ऐसा सुकून मिलता है कि आदमी बेजार वाकई में नहीं होता। और किसी के दिल की बात जो है वो किसी और के, आपके दिल की बात जो है वो अगर मैं बोलना शुरू कर दूं तो ऑटोमेटिकली आप को वो बहुत अच्छा लगेगा, आपके समातों को बहुत अच्छा लगेगा, आपका दिल करेगा यार सुने यार, आप बेजार नहीं होंगे क्योंकि आपके दिल की बात हो रही है। और ये भी एक बहुत बड़ा फन है कि आप दूसरे के दिल की बात पहले से बोल दें। अच्छा, ये तमाम बातें करने के बाद ना मेरे जहन में कुछ आ रहा है कि कुछ शख्सियत जहन में आ रही है। आप ये समझ लें वो ऐसी शख्सियत आ रही है जहन में कि जो इमेजिनरी है कि खूबसूरत सफेद बालों में कोई बुजुर्ग औरत हो या मर्द हो, सफेद कपड़े जो है ज़ेब-ए-तन किए हो और उनकी आवाज में ठहराव हो और एक एक लफ्ज में मोहब्बत छलकती हो, प्यार छलकता हो, दुआएं छलकती हों। कुछ लोगों की गुफ्तगू, बुजुर्गों की गुफ्तगू भी ऐसी होती है कि उनसे उनकी बातें सुनकर ऐसे लग रहा है कि ये दुआ दे रहे हैं जैसे, हालांकि वो बात कर रहे होते हैं। और इस हवाले से मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग कि ये जो चीज मैंने महसूस की कि बातों से ये चीजें छलकना, मैंने आंटी, हमारी बहुत ही प्यारी सी आंटी जो आती हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, वो जब भी बात करती थी तो उनकी गुफ्तगू में मोहब्बत दुआ छलकती है। इसी तरह हमारी प्यारी सी अम्मा जो है वो जब गुफ्तगू करती हैं तो उनकी भी आवाज से मोहब्बत और गुफ्तगू में जो है ना वो दुआ छलकती है। बहुत सारे मेरे ऐसे बुजुर्ग लिसनर्स हैं कि जो फौरन मेरा दिल जो है ना उनकी जानिब रागिब हो जाता है, उसकी वजह जो है वो उनके बात करने का अंदाज है। तो लिहाजा इस बात को कंक्लूड मैं इस तरह करूंगा कि कोशिश किया करें कि आप जो बोल रहे हैं उसमें अल्लाह ताला ये चीज अता फरमा दे आपको, और उसके लिए ये जरूरी है कि आपके दिल में भी वो मोहब्बत, वो प्यार हर इंसान के लिए हो जो आपके सामने, जिसे आप मुखातिब हो रहे हो वो हो। इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे मगर अभी जाएंगे एक ब्रेक की जाने। वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको, जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया उनको बता दें जनाब मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एने सुने हो। भाई शो में कोई ना कोई एक आदत है, एक पार्ट, एक लिंक ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई सबक हो, अच्छी बात हो, तो समझ लीजिए कि वो यही था। हैं जी ते हैं जी, अब आगे हम उसी तरह हल्ले गुल्ले के साथ आगे बढ़ेंगे। एंड थैंक यू फॉर संजू, और इतना प्यारा मैसेज उन्होंने मुझे भेजा, बहुत से बुजुर्गों की याद दिला दी मुझे। और अभी हम आपको लेके जाएंगे गाने की जाने। अच्छा भाई, पश्तो गाने की बहुत फरमाइश आई हुई है, हमारी प्यारी सी बहना सबा गुल ने जो है वो डेडिकेशन की हुई है, हमारे लाला ने डेडिकेशन की हुई है और हमारे अमीन भाई ने डेडिकेशन की हुई है। तो लिहाजा मैं तीन तीन चार चार पश्तो गाने तो नहीं चलाऊंगा, तो लिहाजा पहले सबसे पहले जो ट्रैक चला गया लाला का गाना थोड़ा सा अलग है, वो अलग डेडिकेट होगा। बाकी जो है मैं आप सबकी, आप लोगों की जानिब से डेडिकेट कर रहा हूं ट्रैक, और ये ट्रैक जनाब अमीन की जानिब से भी डेडिकेट हो रहा है और उसके साथ साथ सबा गुल ने जो है वो भी डेडिकेट किया है, लाला को भी डेडिकेट किया है, महानूर को भी डेडिकेट किया है। तो जिन जो जो डेडिकेशन आपकी थी तो उस हवाले से ये डेडिकेट हो रहा है। एलो पढ़ो

वेलकम बैक आए प्यार में। मुर्तजा गजल बाश भी है, मोहब्बत का मारा हुआ लग रहा है मुझे, लेकिन गाने अच्छे होते हैं इनके। आई होप कि ये ट्रैक पसंद आया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं आपके मैसेजेस के जानिब। और अनीस भाई आ गए हैं। अनीस भाई कहाँ गायब थे आप, और कह रहे हैं भाई सलाम, कैसे हैं आप, आपको और तमाम सुनने वालों को भी सलाम। अच्छा मुझे एक चीज मेरे जहन से निकल गई थी, मैं फौरन से पेशता गया हूँ। सिमल अगर सुन रही हैं आप तो प्लीज सुनती रहिएगा, थोड़ा सा आगे लेकर चला गया हूँ, यानी कि समझ रही है ना आप, तो जाना नहीं है कहीं सिमल, पक्का पक्का आपके लिए गाना ढूंढ रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा सा गाना ढूंढ रहा हूँ। हाँ और इनामुल हक कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कैसे हैं आप, आप के वालिद मोहतरम कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक आदाब अदब से मेरा सलाम। और आंटी चाची मोश्क सबागुल अरूसा संजीदा सम्मी भाई सलीम भाई अयूब लाला और सब सुनने वालों को दिल से मेरा आदाब अर्ज है। हैं जी हैं जी। अच्छा मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सबसे, यार अस्सलाम वालेकुम कहा करें, उसमें हमारा फायदा है। अब फायदा क्या है ये बाद में बताऊंगा। कपाया आ गया है भाई, कहे कपाया का सलाम। और मुझे बॉम्बे बेकरी केक, मुझे बॉम्बे बेकरी केक, ये क्या मतलब है कपाया, ये समझ में नहीं आया कि बॉम्बे बेकरी का केक भेज रहे हो क्या मुझे, ताकि मैं और खा लूं। सतार भाई भी हैं हमारे, शोभी भाई भी बैठे हुए हैं। अच्छा जी नदीम ब्रो अस्सलाम वालेकुम, मेरा यहाँ, अच्छा जी ओए ओए ओए बुरी खबर है, ओहो सलीम मेमन हमारे जो खारादर वाले हैं उनका मैसेज आया है, और उनके हाँ जो है वो कह रहे हैं कि दो जो है सानहे हो गए हैं, दो लोगों के इंतकाल हो गए हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरी सिस्टर की वेड को और चाची की फ्राई को, अच्छा अच्छा अच्छा सिस्टर की बुध को और चाची की जुम्मे को डेथ हो गई है, इसलिए मैंने आपको मैसेज नहीं किया, आप प्लीज उनके लिए दुआ करवाइएगा। सलीम एमन खारादर भाई, सलीम एमन की बहन के लिए और उनकी जो चाची हैं उनके लिए आप सबसे दरख्वास्त है कि आप उनके लिए दुआ कीजिए, उनकी मगफरत की दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए, उनके तमाम गुनाहों को माफ फरमाए। सलीम एमन भाई सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया यार कि आपने इतने बड़े सानहे जो दो हुए उसके बावजूद हमें इन्फॉर्म किया, हमें बताया आपने कि इस तरह के सानहे हो गए हैं, वरना जिस कर्ब से आप गुजर रहे होंगे हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे हम आपको याद करते थे कि सलीम अमन भाई खारादर वाले बिरयानी वाले जो है वो गायब है, मगर इस तरह तो होता है, जिंदगी इसी तरह है भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस उनके लिए दुआ कीजिए आप, यही कहूंगा मैं आपको। आगे बढ़ते हैं जनाब। और अनीस कह रहे हैं अने भाई कल हम भी फैमिली वाले वेदर इंजॉय करने निकले और दो दरिया पहुंचे, क्या बात है, व्यू काफी अच्छा था, खाना भी अच्छा था, पर बिल देखकर मजा ही बिगड़ गया। भाई ये तो होता है। अनीस भाई घर वाले जो साथ थे ना उनके चेहरे पर जो खुशियां है ना, यकीन मानिए ऐसा होता है, मर्द की मैं नेचर बता रहा हूं, मर्द की नेचर कि जब वो अपने फैमिली पर पैसा खर्च करता है ना, चाहे उसकी जेब खाली हो जाए, लेकिन बच्चों की बड़ों की चेहरे पर जो मुस्कुराहट और खुशी देखकर ना वो सब भूल जाता है कि मैंने कितना खर्चा किया, तो लिहाजा आप भी भूल जाए और बिल को फाड़ के फेंक दें। इसी बात पर आपको लेकर जाएंगे एक गाने की जानिब। और गाना कौन सा यार, लाला को भी तो गाना डेडिकेट करना है ना यार, लेकिन थोड़ा सा यार लाला फास्ट गाना डेडिकेट कर रहा हूं, बिल्कुल बुरा नहीं मना नहीं है भाई। लाला की जानिब से यानी कि अयूब आफरीदी की जानिब से ये ट्रैक हम डेडिकेट कर रहे हैं सबा गुल को, हेना गुल को, क्योंकि ये गाना अयूब आफरीदी इस वजह से डेडिकेट कर रहे हैं कि निगत और माहीन जो हैं वो बहुत खुश होंगी कि अयूब आफरीदी ने सबा गुल और
हिना गुल को गाना डेडिकेट किया है। तो उनकी खुशी के लिए अयूब आफरीदी की जानिब से ये गाना।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो, और उम्मीद करते हैं कि ट्रैक आपको पसंद आया होगा। और आपके मैसेजेस आ रहे हैं 3636 पर, मैसेजेस की जानिब बढ़ते हैं जनाब। और रानी मेरी बहना क्या कह रही है, अरे मेरे प्यारे ब्रदर आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, माफी चाहती हूँ, मेरा मकसद हरगिज़ तनकीद नहीं था। अरे मेरी बहन मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मनाता और ना ही नाराज हुआ हूँ, आप तनकीद कर सकती हैं। और व्हाइट, ब्लैक, पिंक, ग्रे, स्काई ब्लू और स्किन कलर मेरे पसंदीदा रह गया गया अच्छा मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ये मेरी प्यारी सी बहनों ने बहुत ही मासूमियत के साथ इतने सारे कलर बता दिए, और होता है लोगों को ज्यादा कलर्स पसंद होते हैं, मगर कोई एक रंग जो है वो आपके दिल को बहुत भाता है, और जब भी आप उसको जेबतन करते हैं तो आपका दिल खुद ही बड़ा खुश होता है। और एक जो होती ना चाह के साथ, एक मोहब्बत के साथ जो एक चीज जेबतन की जाए, इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जिनको अपनी कोई शर्ट बड़ी पसंद है, हैं जी, चाहे उसका रंग कोई भी हो, आपका पसंदीदा रंग हो, आपको वो बस शर्ट बड़ी पसंद आ गई, उसकी स्टिचिंग और उसका कपड़ा और जो उसका कलर, और आप उस शर्ट को पहन पहन कर रगड़ दिया आपने, और ऐसे में क्या हो कि अचानक आपके घर वाले कहेंगे बस अभी इस शर्ट को ना फेंक दूंगा, मैं फेंक दूंगी, मैं अम्मी ने कह दिया, बीवी ने कह दिया, बहन ने कह दिया, तो बस फिर आपका दिल कितना खराब, दिल नहीं करता कि वो शर्ट इधर से उधर हो या पैंट कोई ऐसी हो। इसी तरह खवातीन के भी बहुत सारे कपड़े होते हैं, उनके तो बेतहाशा होते हैं वैसे, तो कलर जो है कोई एक ऐसा कलर जो कि आपको हकीकत में बहुत ज्यादा आपके दिल को भाता हो, आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, वो कलर मैंने आपसे पूछा है। तो ये मेरा ख्याल है कि इस बात को फिलहाल मैं यही रहने देता हूं, कल के शो में ये बाकायदा जो है एक टॉपिक की सूरत में लेकर आएंगे और फिर मैं आपको सारी तफसील बताऊंगा, शुरू में उस हवाले से चर्चा करूंगा ताकि आपको समझ में भी आए, यानी कि समझ रहे हैं ना, इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में मुश्क कहती हैं। अमीन भाई पीछे मुड़कर देखे तीन चुड़ैले खड़ी हैं ओए ओए ओए, खतरनाक बातें मत करो, मुझे डर लगता है। और अच्छा, मुझे एक हमारे बड़े प्यारे से दोस्त हैं, उन्होंने एक मुझे कुछ तस्वीरें भेजी और साथ में एक वीडियो भेजी, और मैंने पहले तस्वीरें देखी, मैंने ना शायद फिल्म की शूटिंग है, एक सफेद साड़ी में जेबतन एक चुड़ैल नुमा औरत, आंखें उसकी लाल, वो पहले वो दूर नजर आ रही है, एक दूर से उसकी तस्वीर है, फिर उसकी एक रोशनी में तस्वीर है, फिर एक बंदे की तस्वीरें आई, कुछ बंदे की कि जिस के जिस्म पर जो है चोटों के इतने निशानात के बस बता नहीं सकता। अब चुड़ैल की बात निकल आई तो मैं बता रहा हूं, तो फिर जो है उस बंदे के दोस्त की आवाज आई है कि भाई हम जो है वो खुदाई कर रहा था, मजदूर थे वो मेरा ख्याल है, तो ये हमारा भाई जो है वो एक साइड पे चला गया, मोबाइल स्मार्टफोन तो हर एक के पास होते हैं, तो भाई उधर गया है तो उसको ये औरत नजर आई है, ये समझ गया है कि ये चुड़ैल है, इसने उसका तस्वीरें वगैरह खींचना शुरू किया है, बस वो खींचते खींचते आगे आ गई, आगे आगे उसने इतना कूटा, उसको मार दिया तकरीबन, वो कह रहा है कि अब इस बंदे का बचना बड़ा नामुमकिन है। खैर वो मैंने देखा, मैंने बोला ये शख्स को जिसने मुझे ये भेजी है तस्वीरें, इसको चुड़ैलें कितनी पसंद है, खवातीन उसको इतनी पसंद है कि भाई चुड़ैल की सूरत में भी हो तो वो पोस्ट कर देता है जीता रहे यार, बड़ा प्यारा दोस्त है हमारा वो। आगे बढ़ते हैं, चुड़ैलों के बारे में मैं बता रहा हूँ, चुड़ैलों के बारे में ज्यादा बताते नहीं है, कौसाई यानी कि फरीदा बुरहानुद्दीन भी आ गई। सलाम भाई, मैं फरीदा बुरहानुद्दीन हूँ, कैसे हैं आप, तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मेरी बहना, ठीक ठाक, आप सुनाए आप कैसी हैं? और वो कौसाई कैसे हैं, कहाँ हैं आजकल, वो आजकल आते नहीं हैं, आप ही आ रही हैं। सबीन कुरैशी कैसी हो, कह रही है अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सबीन, और भी कुछ लिखिए आप प्लीज, यानी कि समझ रही है ना। अच्छा भाई, हमारी प्यारी सी नौरीन बहना,
क्योंकि 12 बज गए हैं और दिन आ गया है। सिमल यासिर जो है वो सुन रही होंगी, तो सिमल

अरे बर्थडे सॉन्ग सिमलिया से, सालगिरह बहुत बहुत मुबारक आपकी अम्मी नौरीन तौसीफ की जानिब से।

FM 100 की जानिब, नौरीन तौसीफ की जानिब और हम सब की जानिब सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। भैया हमारी प्यारी जी सिमल को सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। जीती रहो, मुस्कुराती रहो, शाद रहो, आबाद रहो, ये हमारी भी दुआ है। ये हमारी प्यारी सी बहन नौरीन की भी दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें तमाम वो खुशियां अता फरमाए जिनकी तुम ख्वाहिश करो। आमीन सुम आमीन। नसीब अच्छे करे तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के भी। इसके साथ ही जनाब बढ़ते हैं आगे एक अच्छे से ट्रैक की जानेब। और ये ट्रैक कहां गया, कहां गया? हाँ, ये पंजाबी का ट्रैक है और उम्मीद करते हैं कि पसंद आएगा। और ये गाना डेडिकेट कर देते हैं, ये वाला नहीं करने हम, अच्छा सा गाना करते हैं यार कोई और। हाँ ये वाला नहीं करते, ये ट्रैक जनाब। अब गाने क्योंकि मैं नए चला रहा हूं सो दैट्स व्हाई उस टाइप का नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी हम ये वाला गाना। अच्छा क्या कर रहा हूं मैं, सिमिल आपको गाना हम दूसरा डेडिकेट करते हैं, उसके लिए हम ढूंढेंगे। फिलहाल हम ये वाला ट्रैक चला रहे हैं जनाब। सबत बतीन का ये गाना है और बड़ा मशहूर हुआ था और स्पेशली इंडिया में ये बड़ा पॉपुलर हुआ था। जरा सुनकर बताइएगा कैसा लगा। एलो फड़ो

ओ वेलकम बैक आएंगे भाई मजबूर, बहुत ही पॉपुलर ट्रैक एंड आई होप यू लाइक इट। इस तरह तो होता ही इस तरह का कामों में। और रेहान कह रहे हैं, रेहान हूँ पाकिस्तान, इंतजार सॉन्ग। अरे पाकिस्तान से क्या याद दिलाया यार, हम शो करने आया हूँ और शो करना था पाकिस्तान के हवाले से ही, मैंने सवाल करना था, सवाल कुछ और कर बैठा। खैर चले कल से सही, आज से नहीं तो हम भूल गया था, तो मुश्क वाला मैसेज हो गया था। और मुझे सफेद रंग और आसमानी रंग पसंद है और मैं अंदाजा है कि लाला को सफेद रंग पसंद है होगा। अरे यार क्या अंदाजा है आपका सबाबुल, बिल्कुल दुरुस्त अंदाजा है, मेरा भी यही अंदाजा है कि उनको सफेद रंग पसंद है, क्योंकि मैंने जब भी उनको देखा सफेद रंग में ही देखा है, माशाल्लाह। और औरंगी टाउन से रेहाना आ गई हैं और कह रही हैं भाई मैं अस्सलामुअलैकुम कहती हूं, सी ग्रीन और क्या लिखा हुआ है अवेडा के भी कोई रंग हुआ करते हैं, कोई आंखों से कह जाते हैं और कोई दुआ बन जाते हैं, अलविदा लिखा हुआ है, अलविदा के भी कई रंग होते हैं हुआ करते हैं, कोई आंखों से कह जाते हैं और कोई दुआ बन जाते हैं। ओए होए रेहाना मेरी बहना, इतनी गहरी गहरी बातें हैं भाई, क्या बात है। नॉर्मल ग्रे इन शर्ट एज वेल एज इन पैंट, क्या बात है भाई, ये भी अच्छा कलर है भाई ग्रे वाला। चले भाई इसी बात पर हम जा रहे हैं बर्थडे गर्ल को विश करने के लिए, उनको गाना डेडिकेट करने के लिए। और ये ट्रैक जो है ये भाई नौरीन की जानिब से, हमारी जानिब से हम डेडिकेट कर रहे हैं सिमल को, उनकी बर्थडे है और उनकी फैमिली को भी डेडिकेट कर रहे हैं। और उसके बाद एक और ट्रैक चलाएंगे जनाब, और वो ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे हमारी प्यारी सी लिसनर तानिया हसन जी, भी सुन रही है। तो तानिया हसन जी सेकंड ट्रैक जो है वो आपके लिए है, फर्स्ट ट्रैक जो है वो सिमल के लिए है। एलो फड़ो।

0: वेलकम बैक कहेंगे सुनियो जिंदगी है कितनी हसी।
1: भाई क्या बात है भाई,
0: ये थे हसन और रोशन, और आई होप कि ट्रैक भी आपको पसंद आया होगा। वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है भाई, दो फरमाइशें रहती हैं, एक जिंदगी की और एक और, यानी कि समझ रहे ना। हाँ तो सुनियो संजीदा जी की बातें दिल को छू लेती हैं, वो तारीफ के लायक हैं। सलीम मेमन साहब कह रहे हैं क्या बात है भाई, क्या बात है, शुक्रिया आपका। और नदीम आप दुआ करवाए, मैंने सुना है कि आपके चैनल 12 बजे बंद हो गया था। सलीम मेमन, सलीम मेमन भाई दुआ यकीन मानिए करवाई है, और मैंने खुद भी दुआ की है कि अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, और चाची और सिस्टर की अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए। अगर आपने पहले नहीं सुना तो अभी ये सुन लीजिए, और सबसे मैंने दरख्वास्त की थी कि आपके लिए खुसूसी दुआ करें। और हैप्पी बर्थडे नौरीन बहना, निम्रा बहना को आमीन भाई की दुआ है। अल्लाह पाक अल्लाह लाखों खुशियां सेहत कामयाबियां अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। अमीन भाई नौरीन बहना की बर्थडे नहीं है, सिमल यासिर की बर्थडे है, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। हाँ समझा करें, समझा करें। और संजू जो है वो गायब हो गई हैं, और उनका एक मैसेज जो है जो मैंने नहीं रीड किया था वो रीड करते हैं कि भाई इन्होंने ज्यादा का खाना नहीं ढूंसा था सिर्फ पौंड रोटी खाई थी, उस पर ये हाल है। संजू कुछ खाया पिया करो, इसका मतलब है आपको जो चक्कर आ रहे हैं वो कम खाने की वजह से आ रहे हैं, यानी कि समझ रही है ना। और हमारे गुल साहब जो हैं वो ब्लू कलर का बोलकर गायब हो गए, लेकिन बड़ों के साथ खेलने के शौक में तेरी ही तेरी तरह ही हमने चोट खाई है ये बड़ा अच्छा था। सलीम भैया को गाया भाई संजू ने, सलामत रहें। और वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, और मैं एक ऐमी गाना गा देता हूँ भाई, वरना जिंदगी नाराज ना हो जाए, और जिंदगी जब नाराज हो जाए तो यानी कि समझ रहे हैं ना आप, किसी की भी जिंदगी नाराज हो जाए तो बड़ा मसला हो जाता है भाई, बहुत मसला हो जाता है। थोड़ा सा सुनाते हैं, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा।

अगर इस ट्रैक में कोई बेसुरा बना हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि

ロスクラーバー。 Welcome back आएंगे सुनियो, and I hope कि गाना थोड़ा बहुत तो पसंद आया होगा आपको। और वक्त जो है वो प्रर करके उड़ गया है। शुक्रिया अमीन भाई आपकी दुआओं का, सिमल को पहुंच गई हैं ये कह रही है नौरीन तौसीफ। और जिंदगी तो जिंदगी है हमारी, वाओ जरा चेहरा तो दिखाओ, माशाल्लाह रूह मन, ये तो आपका सिग्नेचर है ना जनाब संजू, थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग। अच्छा जनाब, इसके साथ ही अब आप लोगों से चाहेंगे इजाजत। और आखिरी गाना, वो पहला वाला गाना तो जो है ना वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था, आखिरी गाना समवन स्पेशल, क्या आप सभी मेरे लिए स्पेशल हैं, वैसे हमारी प्यारी सी लिसनर तानिया जी को हम ये डेडिकेट करेंगे उनकी जानिब से समवन स्पेशल को। तो तानिया जी आपका ट्रैक आखिर में हम चला रहे हैं। इसके साथ ही हम चाहेंगे आप लोगों से इजाजत, इंशाल्लाह ताला मुलाकात जो है वो आपसे होगी कल म्यूजिक ट्विस्टर में ही, ओल्डी गोल्डी क्लासिक में। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि नदीम भाई आपने कलर्स के बारे में तो बताया ही नहीं है, तो ये बड़ा मजेदार किस्म का टॉपिक है, इस हवाले से कल बात करेंगे। लेकिन कल जो है वो हम पाकिस्तान का, क्योंकि 14 अगस्त है और 14 अगस्त जो है आजादी का दिन है और पूरा महीना जो है वो हम जिसने आजादी की खुशियां जो है वो मना रहे होते हैं। तो वैसे मैंने ये परसों ये कहा था कि मैं अगस्त के हवाले से ही पाकिस्तान की जनरल नॉलेज के सवाल करूंगा आपसे पाकिस्तान से रिलेटेड, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। तो कलर्स के हवाले से कल सवाल नहीं होगा, आपको बताऊंगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा, और सवाल जो होगा वो पाकिस्तान के हवाले से मैं आप लोगों से करूंगा और पाकिस्तान की बहुत सारी खूबसूरतियां बयान करूंगा। पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या अता फरमाया है, इस हवाले से इस पूरे 14 अगस्त तक जो है मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। और इसके साथ ही जनाब इजाजत चाहता हूं, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल, अल्लाह हाफिज।

0: pasi, hoy, es que te pasi.
1: FM 100's time check. It's 1 a.m.

Edelman, Raheem Yarhan.

जी जनाब, हम में तुम और तुम में हम गुम हो गए, होते होते एक हम तुम हो गए। नाइद अख्तर और मेडिएशन खान साहब की आवाज से वक्त 2:09 हो चुके हैं और 3 तक मैं आपके साथ हूँ और खुश आमदीद कहूंगा एक बार फिर अपने तमाम ही सुनने वालों को और देखने वालों को जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूट्यूब पर। इस वक्त हमें देख रहे हैं आप सबको खुश आमदीद, जो रेडियो पर सुन रहे हैं उन्हें खुश आमदीद। और अब आते हैं एक खान साहब के बाद आवाज शामिल करते हैं एक और माजी की सुपर क्लासिक आवाज़।

ये मस्त नजारे प्यार करो तो इनसे करो। जी हाँ बिल्कुल, प्यार करो तो इनसे करो। ये मौसम, ये मस्त नजारे, और जनाब अब ये मस्त नजारे भी हो चुके हैं, और जब मस्त नजारे होते हैं और मौसम बड़ा खुशगवार होता है तो फिर ऐसे में कहीं कहीं भंवरा भी नजर आने लगता है ना। जब भंवरा नजर आए तो फिर

0: Listen and watch.
1: Listen and watch.
0: Live entertainment show.
1: Entertainment show.
0: With Ajmal Khan Shobhi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
1: FM 100 Pakistan.
2: ये तो आवाज थी एमएलसी साहब की. मुंशी साहब के अपने दौर की क्या खूबसूरत आवाजें थी. बाकी सारी आवाजें बस धीरे धीरे हमें छोड़ के चली गई. और अभी आवाजें कहाँ. हर आवाज सदी की एक ही आवाज थी. मेजिसन खान साहब, मैडम माला बेगम, खूबसूरत आवाजें. शहनाज बेगम, तसव्वुर खानम, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, क्या खूबसूरत गाना. अभी ये करते हैं कि हम मिली नगमा एक और शामिल करते हैं, क्योंकि यकीनन हमारा आजादी का मंथ भी चल रहा है. और ये खूबसूरत ट्रैक में शामिल कर रहा हूं मैं. और ये गाया है मेहदी हसन खान साहब के साहबजादे इमरान मेहदी हसन ने. प्यारे वतन के नाम करती है.

जब समा खूबसूरत हो गया है कि नशा सा छा रहा है तो फिर समा की बात होगी तो फिर हम आते हैं जरा माला बेगम के पास, है ना। समा जब प्यारा प्यारा होगा।